एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि

0: पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित

0: गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आरंभ करते हैं देश वंदना से।

समूह स्वर की इस देश वंदना के बाद आइए पवन सुत हनुमान का स्मरण करते हुए सुनते हैं हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति रचना।

राम भक्त हनुमान की इस प्रार्थना के बाद आइए प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए सुनते हैं लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में पंडित नरेंद्र शर्मा की ये भक्ति रचना।

0: डीवी पलुस्कर की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना संपन्न होती है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। पेश है सामूहिक सुझावों का कार्यक्रम खेती की बात। इसमें आज जानकारी अदरक की उन्नत खेती, इस विषय पर वाचन स्वर त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय का है।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। अदरक जिला आधा कैथन। अदरक के बिना जैसे चाय अधूरा, एकर अलावा अदरक अपन औषधीय गुण के कारण औ अब्बड़ कन उपयोग मा आथे। एखरे सेती अदरक के बाजार मा आठो काल 12 महीना मांग रही थे। और जौन हमर किसान भाई मन अदरक के खेती करते ओमन ला बढ़िया लाभ मिलते। अदरक के खेती पर जहाँ तक हम बात करी माटी के, तो बढ़िया जीवाश्म वाले, अच्छा जल निथार वाले, चिकनी रेतीला लाल माटी, ये माँ बढ़िया अदरक के खेती करे जा सकते। अदरक के फसल के वृद्धि पर भूया 6 ले 6.5 पीएच मान वाला होना चाहिए, ये अच्छा माने जाते। जेन खेत मा एक पैत अदरक के खेती करे गए रहे, दोबारा फिर उमा अवैया बेरा मा अदरक के खेती नहीं करना चाहिए, फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। अदरक के खेती पर भूया के तैयारी करे बर खेत ला 2 ले 3 पैत बढ़िया गहरी जोताई कर लेना चाहिए। और गहरी जोताई करके पाटा चला के बढ़िया माटी ला भुरभुरा बना लेना चाहिए और बराबर कर लेना चाहिए। अदरक के बिजाई पर 15 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा मादा बनाना चाहिए, जेमा मादा के बीच में 50 सेंटीमीटर के दूरी रखे जाना चाहिए। अदरक के उन्नत किस्म के जहाँ तक बात है, तो IISR महिमा, कार्तिका, सुप्रभा, सुरुचि, ये बढ़िया अदरक के किस्म में संगवारी हो। अदरक के गांठ लगाए के बिरा ध्यान ये देना है कि पौधा ले पौधा के दूरी 15 ले 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अदरक लगावत बिरा ये चेत रखना है कि पंक्ति ले पंक्ति के दूरी 15 ले 20 सेंटीमीटर और पौधा के पौधा ले दूरी 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। बीज के लगाए के समय गहराई 3 ले 4 सेंटीमीटर के करीब होना चाहिए। बीजा के मात्रा के जहाँ तक बात है, अदरक के बीजा गांठ के रूप में प्रयोग करे जाते। बिजाई बर 480 ले 720 किलो प्रति एकड़ बीज के प्रयोग करना चाहिए। बीज लगाए के पहली बीजोपचार बहुत जरूरी है संगवारी हो। तो अदरक के गांठ ला मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी ले उपचार करना चाहिए। ये गांठ मल्ला 30 मिनट तक ये घोल में बोर के रख देना है। एखर ले अदरक के गांठ में जौन फफूंदी ले होइया रोग है और फफूंदी है ओखर से बचाया जा सके। उपचार के बाद अदरक के गांठ ला 3 ले 4 घंटा तक छाँव में सुखा के रखना चाहिए। खाटू माटी के जहाँ तक बात है, तो अदरक में 55 किलो यूरिया, 16 किलो पोटास के जरूरत पड़ती। संगी हो, अदरक के गांठ लगाए के बाद ओला पैरा ले तोप देना चाहिए, जेखर ले अंकुरण बड़ा बढ़िया होते। खरपतवार झनुगे पाए एखर विशेष चेत रखना है संगवारी हो। अदरक के फसल में जहाँ तक सिंचाई के बात है, तो ये है निर्भर करते के मौसम उस समय कितना है और भूया कितना है।

0: अदरक के फसल म होवइया जउन सबले बड़े बीमारी हे पत्ता म धब्बा अउ सड़न। यदि ये बीमारी दिखे तो मैनकोजेब 30 ग्राम या फिर कार्बेंडाजिम 10 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी म मिला के 15 ले 20 दिन म फसल म स्प्रे करना चाहिए। अदरक के फसल 8 महीना म कटाई बर तैयार हो जाते। ये फसल अगर मसाला के लिए उपयोग करना है तो 6 महीना में कटाई करना चाहिए और दूसर कोई उपयोग करना है तो 8 महीना में कटाई करना चाहिए। कटाई बार एक हर पहचान है जब एक अदरक के पत्ता पूरा प्यूरा हो जाए और पूरी तरह ले जब सूखा जाए तब एक हर कटाई और गुड़ाई करना चाहिए। गांठ ला उखाड़ लेना चाहिए और उखाड़ के बढ़िया 2-3 पैत साफ पानी में धो लेना चाहिए। तेखर बाद 2 ले 3 दिन बढ़िया इला छाव में सुखो के रखना चाहिए। राम राम जय जोहार।
1: अदरक की उन्नत खेती, इस विषय पर आपने सुनी जानकारी कार्यक्रम खेती की बात में। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। पेश है रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर अनुराधा पौडवाल का है। संगीत संयोजन किया है सतीश भाटिया ने।
2: एपिसोड नंबर 84 84

श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी पूजा के लिए फूल लेने बाग में गए। वसंत ऋतु के प्रभाव से सब ओर वहां प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखते ही बनती थी। नए नए पत्तों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष लहला रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी अपनी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच निर्मल जल भरा सुहावना सरोवर बहुरंगी कमल पुष्पों से शोभित है और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं? ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

रामचरितमानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:45 हुए हैं। पेश है चिंतन। चिंतन में आज का विषय है मृत्यु भय। आलेख श्री भाव सिंह हीरवानी का है।

यदि मनुष्य किसी चीज से सबसे अधिक भयभीत है तो वो है मृत्यु। इस दुनिया में विरले ही व्यक्ति होंगे जिन्होंने मृत्यु भय को जीत लिया हो। हर इंसान मृत्यु से बचना और भागना चाहता है, क्योंकि जिन प्राणी पदार्थों के लिए वो दिन रात खींचता और लड़ता मरता है, मृत्यु के साथ ही उन सब का संबंध पूरी तरह खत्म हो जाता है। यही वजह है कि मनुष्य सब कुछ दांव पर लगाकर जीवित रहना चाहता है, किंतु निर्दयी मौत किसी को नहीं छोड़ती। आज तक कोई भी उसके पंजे से बच नहीं पाया, हम भी नहीं बचेंगे, ये कटु सत्य है। तो क्या मृत्यु इतनी भयावह है जैसा कि हम मान बैठे हैं? विवेक दृष्टि से देखें तो हम महसूस करेंगे कि हमारी मान्यता एकदम निर्मूल है। अपनी नासमझी और अज्ञानता के कारण ही हमने ऐसी धारणा बना ली है, जबकि मृत्यु सुखकर और त्राणदायी है। मृत्यु की गोद में सोकर ही प्राणी सारे सांसारिक दुखों से मुक्ति पाता है। कल्पना कीजिए, असहाय वृद्ध और असक्त व्यक्तियों की मृत्यु न हो तो उनकी क्या दुर्दशा होगी? फिर इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो सुखी है? ये और बात है कि मनुष्य दुखों को ही सुख मानकर बदहवास है। संत कबीर कहते हैं, तन धरे सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। सच है, इस संसार में जन्मे हर प्राणी को दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों की वेदना सहनी पड़ती है। इसका अंत तो तभी होता है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। अनेक अवसरों पर वृद्ध, असक्त और लाचार व्यक्तियों को मृत्यु की कामना करते देखा गया है, क्योंकि जीवन शक्ति क्षीण हो जाने के कारण जर्जर हो चुके शरीर से केवल दुख प्राप्त होता है और इस संताप से मुक्ति का उपाय केवल मृत्यु है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु क्या है, फिर भी आइए इस पर थोड़ा विचार करके देखें। भारतीय जीवन दर्शन पूर्व से इस बात को प्रतिपादित करता है कि जीव असंग, अजर, अमर, अविनाशी और अजन्मा है। उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मरता है वो तो पंच महाभूतों का समुच्चय या शरीर है, यही जन्मता और मरता है। जीव अपने पूर्व संस्कारवश शरीर धारण करके प्रारब्ध भोगों को भोगते हुए नए शरीर गढ़ता है। अब तक वो न जाने कितने शरीर धारण करके छोड़ चुका है। गीता में श्री कृष्ण शोकग्रस्त अर्जुन को उपदेश करते हैं।

0: हे अर्जुन, तू किसके लिए शोक करता है? जो इस शरीर को छोड़कर चला गया वो तो अविनाशी है, उसे कोई नहीं मार सकता, और इस शरीर का तो अंत होना ही है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीव और शरीर का संबंध ही जीवन और इनका वियोग हो जाना ही मृत्यु है। समयावधि पूर्ण हो जाने पर जीव इस शरीर को छोड़कर अपने कर्मों के संस्कारवश दूसरा शरीर धारण करता है। इस तरह मृत्यु पुराने शरीर का अंत करती है तो नए जीवन की शुरुआत भी करती है। यदि हम ये कहें कि मृत्यु चोला बदलने की प्रक्रिया मात्र है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इसीलिए बैरागी साधु संत मृत्यु से पहले ही कफनी ओढ़े निर्भय होकर जीवन जीते हैं। हम सब भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और मृत्यु भय से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं।
1: मृत्यु भय, इस विषय पर आपने सुना चिंतन, आलेख श्री भाव सिंह हीरवानी का था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा 7:05 पर। कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आनंद लीजिएगा 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समय होगा 8:30। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे 10:00 से। नए तराने कार्यक्रम प्रसारित होगा 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दिन के 11:00 से। विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद लीजिएगा 9:00, 11:30 से और फिर 12:00 से शाम 5:00 तक। संध्या 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर वोट प्रसारित किया जाएगा। शाम 5:05 पर कार्यक्रम भुइयां के बोली प्रसारित किया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे वार्ता, विषय होगा शिक्षा ले ही महिला सशक्तिकरण संभव हो सका थे। वार्ताकार होंगी डॉक्टर रत्ना मिश्रा। साथ ही सुनिएगा मनोहर दास मानिकपुरी का काव्य पाठ। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। शाम 5:35 पर महिला बहनों का कार्यक्रम महिला सभा प्रसारित किया जाएगा। इसमें सामूहिक चर्चा का विषय होगा विश्व फेयर प्ले दिवस का महत्व। साथ ही डिजिटल दुनिया के छिपे खतरे विषय पर क्रम परिसंवाद प्रसारित किया जाएगा। ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का आनंद लीजिएगा 6:20 पर और फिर 7:00 से। ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:20 से। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा पशुओं का टीकाकरण। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिएगा 7:30 से। इसमें आज की बात होगी एकीकृत कृषि में डेयरी प्रबंधन इस विषय पर। साथ ही स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में के तहत ग्राम तेलसरा विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर के कृषकों के मध्य ध्वन्यांकित कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संपादन महंगू भैया का होगा और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

सुगम संगीत प्रसारित होगा रात्रि 8 बजे से। इसमें कलाकार होंगे अभिजीत सामंत और रजनीगंधा। कार्यक्रम सुनिएगा।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 7 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार, संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने

0: भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धनशोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाश

0: 7:30 से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं, हमारे जीवन में खेल का बड़ा ही महत्व है। खेलकूद से जहाँ हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, खेलने के दौरान प्रत्येक मांसपेशियाँ कार्य करती हैं और रक्त तीव्रता से शरीर में दौड़ने लगता है, जिससे हमारा शरीर निरोग बना रहता है और एक निरोग शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। उसमें अच्छे बुरे को समझने की शक्ति होती है, जिससे चारित्रिक दुर्बलताएं मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करती। साथ ही साथ खेल से शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होता है, फलतः आत्मविश्वास और अनुशासन की भावना भी बलवती होती है। किशोरावस्था में हमारे शरीर में अतिरिक्त शक्ति होती है, खेलकूद के द्वारा अतिरिक्त शक्ति को सरलता से रचनात्मक मार्ग में परिचालित किया जा सकता है। इस प्रकार उस अतिरिक्त शक्ति का सदुपयोग हो जाता है। खेल से हमारा शरीर थक भी जाता है और इसके परिणाम स्वरूप व्यर्थ की बातें हमारे मस्तिष्क में नहीं आती। खेल को आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहना और आपसी वैर भाव को समाप्त करने की भावना भी बलवती होती है। खेल से हमारे जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण की भावना भी विकसित होती है और जीवन के प्रति आनंद और उल्लास का भी अनुभूति हमें होती है। खेल केवल शारीरिक क्षमता से जीतने का माध्यम नहीं है। खेल मानवीय मूल्यों, अनुशासन और चरित्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। खेल भावना निष्पक्षता और ईमानदारी को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 19 मई को निष्पक्ष खेल दिवस या वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया जाता है। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस या वर्ल्ड फेयर प्ले डे का उद्देश्य दुनिया भर के खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों को ये स्मरण

0: कनकनाता है कि खेल में जीत से भी अधिक महत्वपूर्ण निष्पक्षता और परस्पर सम्मान की भावना है। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता दिए जाने के पश्चात 19 मई 2025 को पहला विश्व निष्पक्ष खेल दिवस आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल समिति पेनेथेलान इंटरनेशनल और यूरोपीय खेल समूहों द्वारा इस दिवस को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज 19 मई का ये दिन खेल के मैदान पर और उसके बाहर भी पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: श्रोताओं, आज 19 मई का ये दिन खेल के मैदान पर और उसके बाहर भी पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। फेयर प्ले या निष्पक्ष खेल से हम खेल के नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करना, साथ ही साथ नियमों के पालन के अलावा प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी के प्रति भी आदर और सम्मान रखने की भावना को विकसित करने की प्रेरणा देता है। निर्णायक के निर्णयों को सहर्ष स्वीकार करना, जीत का अहंकार त्याग कर विरोधी पक्ष के खिलाड़ियों को खेल कौशल को भी सम्मान देना हमें ये दिवस सिखाता है। और प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों की खेल की सराहना करना भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ प्रतिबंधित दवाओं का खेलों के दौरान प्रयोग को रोकना और धोखाधड़ी और हिंसा जैसी कुप्रथाओं को खेलों से दूर रखने में ये दिवस हमें प्रेरित करता है। सच्ची खेल भावना वही है जहां खिलाड़ी खुद से पहले खेल और उसकी गरिमा को ऊपर रखता है। फेयर प्ले डे हमें स्मरण दिलाता है कि खेल मैदान में हर खिलाड़ी बराबर है, चाहे उसकी सांस्कृतिक, सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। ये दिवस समाज से भेदभाव मिटाने की भावना का पक्षधर है। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस से हमें सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए गलत रास्तों, कपट या धोखाधड़ी का सहारा नहीं लेना चाहिए। खेल मैदान के ये नियम युवा और बाल खिलाड़ियों के वास्तविक जीवन में भी नैतिक गुणों का विकास करते हैं। खेलों में बढ़ता व्यवसायीकरण कई बार खिलाड़ियों को गलत कदम उठाने पर विवश कर सकता है। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस डोपिंग और मैदानी आक्रामकता या नस्लवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश हमें प्रदान करता है। बिना किसी शॉर्टकट और

0: धोखाधड़ी के अपनी वास्तविक क्षमता से खेल खेलना, प्रतिद्वंदिता को खुले दिल से स्वीकार करना और प्रतिद्वंदी को अपना दुश्मन न मानकर उनके प्रति सम्मान और आदर का भाव रखना, सहानुभूति और एकजुटता का सामंजस्य बनाकर खेलने की भावना विकसित करने में ये दिवस सहायक है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए अब सुन लेते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। उमाशंकर पांडे का कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिले में हो रहे लगातार सड़क निर्माण एवं पर्याप्त साफ सुथरे चौक चौराहों के साथ साथ आप सभी बिलासपुर वासियों की सजगता एवं यातायात पुलिस के प्रयास से शहर से लेकर गांव-गांव में भी अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, वाहन यात्री वाहक हो या माल वाहक, सभी की अपनी एक निश्चित माल या सवारी ढोने की क्षमता होती है और इसी क्षमता के अनुसार ही उस वाहन की आदर्श एवं मानक बनावट होती है, जिसे संबंधित अधिकृत कंपनी के द्वारा हर दृष्टि से जांच परख कर आकार आदि को अंतिम स्वरूप दिया जाता है। किंतु कुछ वाहन मालिकों के द्वारा क्षमता से अधिक माल या सवारी परिवहन के लिए ऐसे वाहनों के बनावट से छेड़छाड़ या बदलाव किया जाता है, जैसे सवारी ऑटो में स्थायी सीट के सामने अतिरिक्त सीट बनाकर क्षमता से अधिक सवारी ढोते हैं। इसी प्रकार पिकअप, मेटाडोर या ट्रक आदि में डाला अर्थात बॉडी को अधिक ऊंचा कर वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक माल परिवहन किया जाता है। वाहन को मानक आकार से अमानक बना दिया जाता है। ऐसा करने से सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है, हर पल दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय भी है। अतः अपने वाहनों के बनावट पर फेरबदल या छेड़छाड़ हरगिज न करें, यह घातक भी हो सकता है। मित्रों, इसी प्रकार देखा जाता है प्रायः लंबी दूरी के मालवाहक या यात्री वाहक वाहनों में एक ही चालक रहते हैं, जबकि मानव स्वभाव के अनुसार सभी को काम के साथ साथ पर्याप्त नींद या विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि एक ही चालक लगातार वाहन चला रहा है तो यह घातक है। अनेकों बार इसी स्थिति के चलते चालक को झपकी आने से कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए लंबी दूरी के वाहनों में हमेशा दो चालक रखें, अन्यथा विधि सम्मत कार्यवाही भी आपके विरुद्ध की जा सकती है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 21 मई को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा नील हरित काई और हरी खाद का उपयोग। विषय एक बार फिर

0: नील हरित काई और हरी खाद का उपयोग और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665 92। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 21 मई 2026 और 22 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: श्रोताओं, विश्व निष्पक्ष खेल दिवस से हमें सीख मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कपट, धोखाधड़ी या गलत रास्तों का सहारा नहीं लेना चाहिए। खेल मैदान के ये नियम युवा और बाल खिलाड़ियों के वास्तविक जीवन में भी नैतिक गुणों, अनुशासन और आत्मसंयम को विकसित करते हैं। खेलों को निष्पक्षता से और खेल भावना से खेला जाए तो निश्चित ही खेल अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और निष्पक्षता खेल का एक आवश्यक अंग है जो हर किसी को अपनी प्रतिभा को उन्मुक्त रूप से प्रदर्शित करने के अवसर देता है। विश्व निष्पक्ष खेल दिवस, आज का दिन खेलों को अनुशासित और परस्पर प्रतिद्वंद्विता की भावना से रहित होकर प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के सम्मान की भावना, उनके आदर करने की भावना को भी विकसित करता है। हम स्वयं देखते हैं कि विभिन्न देशों की टीमें जब खेलती हैं तो उनके सदस्यों में सहज ही मैत्री भाव का विकास हो जाता है। क्रीड़ा जगत में एक साथ भाग लेने वाले खिलाड़ी परस्पर प्रतिस्पर्धा तो करते हैं पर द्वेष भाव से दूर रहते हैं। खिलाड़ी ही वस्तुतः किसी भी देश के सच्चे प्रतिनिधि हो सकते हैं। खिलाड़ी हार जीत को जब खिलाड़ी भावना से लेने की शिक्षा पाते हैं तो वे जीवन में भी सफलता असफलता के अवसरों पर संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं। जब दो संस्थाओं की या दो देशों की टीमें किसी खेल टूर्नामेंट में खेलती हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग लेती हैं तो वे ऐसे कोई काम नहीं करती जिससे उनके देशों की बदनामी हो। परिणाम स्वरूप उनमें आत्मनियंत्रण की भावना जागृत होती है और वे अनुशासित ढंग से व्यवहार करते हैं।

विश्व खेल दिवस के अवसर पर हम खेल भावना को विकसित करें, प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी का सम्मान करें, उनका आदर करें और नशे की प्रवृत्ति, डोपिंग, कपट, इस तरह के आचरण हम खेलों में ना करें। यही संदेश हमें विश्व खेल दिवस से मिलता है और विश्व निष्पक्ष खेल दिवस हमें खेलों की उच्चतम भावना को विकसित करने में मदद करता है। श्रोताओं, जब हम बातें कर रहे हैं निष्पक्ष खेल दिवस की, तो अब आइए सुन लेते हैं इसी से जुड़ा ये गीत।

आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ अब आज सुबह कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।

आज सुबह ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में लीजिए पेश है किशोर कुमार और साथियों के स्वर में जावेद अख्तर का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया, मिस्टर इंडिया फिल्म का ये गीत।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया 20 साल बाद फिल्म का ये गीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है किशोर कुमार मोहम्मद रफी के स्वर में मजरूह का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया, यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया भ्रष्टाचार फिल्म का ये गीत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। शतरंज, आइए सुने इस फिल्म का गीत कुमार शानू और साधना सरगम की आवाजों में। समीर ने गीत लिखा है, आनंद मिलिंद का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। समाचार प्रभात और अंग्रेजी में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर

सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क

0: आमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
1: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहाँ उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
6: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र

0: दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब डॉलर अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर 100 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह

कहानी संगवारी के शर्त कहानीकार हैं श्रीमान सिंह ठाकुर और कविता पाठ श्री तोषण कुमार चुरेंद्र से। तो लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता हैं महेंद्र साहू।

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के ए अंक मा आप मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू कोती ले। श्रोता साथी हो, आज के ए अंक मा आप मन ला सुनवाथन श्री विजय मिश्रा अमित के वार्ता छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। संगवारी के शर्त, ये कहानी आप मन सुनिया श्री मानसिंह मौलिक ले और कविता सुनाही श्री तोषण कुमार चुरेंद्र। कार्यक्रम में सबले पहली आप मन ला सुनवाथन एक वार्ता जेकर विषय है छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य में डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। वार्ताकार हावे श्री विजय मिश्र अमित।
1: दुनिया में दो किस्म के मनखे होते हैं। एक तो वो जिन मन हर दूसर के बनाए रद्दा में रेंगते हैं, दूसर वो मनखे होते हैं जिन मन हर खुदे नवा रद्दा गढ़ते हैं। जिन मन हर खुदे नवा रद्दा गढ़ते हैं तेन मन हर अपन काम के दम मा खास बन जाते हैं, महीन ले महान बन जाते हैं। ऐसने है गुण के धनी मनखे मा छत्तीसगढ़ महतारी के दुलरवा बेटा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी के नाम हर रचे बसे हवाए। उखर जन्म जाज्वल्य देव नगरी जांजगीर के रानी पारा दुबे पाड़ा मा 1 मई 1928 के होए रहीस। दादा पंडित श्यामलाल शर्मा औ महतारी सेवती के संस्कार में पले बढ़े पालेश्वर जी हर नानपन ले मेहनत मंजूरी के मरम ला समझ गे रहीन हैं। इही पाए के उन कहें कि दुनिया भर में 1 मई ला मजदूर दिवस के रूप में जाने जाते। मोरो जन्म हर 1 मई के हो है, तब महू हर कलम के मजदूर आओ। उखर असल कर्म भूमि बिलासपुर हर रहीस। बाली उमर ले कागज में कलम के नांगर चलावत चलावत आरुग आखर के बीजा बोवत बोवत छत्तीसगढ़ी भाखा ला पोठ रोंठ बनाए बर जियत मरत ले उन बूता करिन। छत्तीसगढ़ी भाखा मा मानक लेखन और छत्तीसगढ़िया मान ल बढ़ाए बर उन संदा पदोली देवय। अपन हक बर लड़े ल परही सुत निंदा मन जागा। ये बात ल लिख के पालेश्वर जी हर छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान ल जगाए के जबड़ बूता करिन। हिंदी भाषा के गुणी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे हावय कि निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा सम्मान के मिटै नहीं को सूल। ये लाइन हर पालेश्वर जी के रुआ रुआ में समाये रही से। ते पाए के छत्तीसगढ़ी भाखा लोक साहित्य और संस्कृति ला जन मन में बगरावत छत्तीसगढ़ राज बने के पाछू पालेश्वर जी हर सबले पहली छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्द कोश छत्तीसगढ़ सरकार ला दे रहीस, ताकि सरकारी काम काज हर तको छत्तीसगढ़ी भाखा मा हो सकाए। पालेश्वर जी हर अंग्रेजी हिंदी संस्कृत सहित दीगर भाखा के जबड़ जानकार होए के बावजूद छत्तीसगढ़ी भाखा के महल खड़े करे के जोन पोखा न्यू गढ़ी से तेनहर संदेशा देवा थे। कुछ काम करे बर मौसम नहीं मन होना चाही, साधन जम्मो जुट जाही बस मनखे के भीतर संकल्प के धन होना चाही। बछर 60 के पाछू हिंदी छत्तीसगढ़िया कलमकार मन बर सूरज कस उत पालेश्वर जी के कलम हर उजास देहे के बूता करिस। उखर कलम के किरण हर चारों मुड़ा बगर गे और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम मा तको संघर गे। प्रबंध पाटल सुसक झन कुर्री सुरताले, तिरिया जन्म झन देई गुड़ी के गोठ सुरुज साखी हे। छत्तीसगढ़ के इतिहास परंपरा तीज तिहार कहावत खेती किसानी असन उखर कतकोन किताब छपे के पाछू छत्तीसगढ़ी भाखा के मान हर गजबे बाढ़ी से। आकाशवाणी मा छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन पठन ल बढ़र देवैया पहली साहित्यकार डॉक्टर शर्मा रहीन है। अपन पहली कहानी

नी नाव के नेह मां के पठन करिन नामी अखबार मा दू बच्छर ले ज्यादा छत्तीसगढ़ी परिदर्शन गुड़ी के गोट लिखत छपत छत्तीसगढ़ी भाखाला पत्रकारिता के दुनिया मा अंगत कस पांव धराए के बूता पालेश्वर जी करिन। अपन महतारी भाखाला लेके पालेश्वर जी के बड़ सुघर विचार रही से ओ कहें छत्तीसगढ़ी हर दाई के दूध के नाम आए बड़े दाई के चौन्हा चुम्मा आए बाबा के माया सुवारी के सिंदूर बहिनी के राखी और गुइया के भोजली आए। छत्तीसगढ़ शासन के पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान भारत सरकार के वयोश्रेष्ठ सम्मान बिहार सरकार के विद्याधर कवि सम्मान बक्सी शोध पीठ के साधना सम्मान मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के बागेश्वरी पुरस्कार असन कतकोन मान और सम्मान उनला मिले रही से उनखर लिखे कहानी कविता निबंध और कतकोन दूसर रचना मनहर रहीम कबीर तुलसी मुंशी प्रेमचंद जी के लिखे रचना कस आजो कहरत हावय। फोकट के चंदन घीस भई लल्लू एकर बहुत खिलाफ रहीन है पालेश्वर जी। जब कोनो कवि लेखक के नवा किताब के विमोचन में जाए पगरई होके या माई पहुना होके त खुदे किताब ल बिसावें। उखर कहना रही से कि किताब ल फोकट में नहीं बांटना चाहिए बल्कि किताब और रचनाकार के मान ल राखत किताब ल बिसाना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में गीत गजल कविता माने पद्य में तो अड़बड़ लिखे के कारज हुआ थे फिर गद्य में कहानी नाटक उपन्यास निबंध के लिखई हर कम हुआ थे। छत्तीसगढ़ के साहित्य जगतला ये दशा ले उबारे बर छत्तीसगढ़ी गद्य कोठी ल भरे बर पालेश्वर कलम हर कमाल धमाल करी सावय। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा जी के लिखे हरेक रचना हर गोरस में पागे मखना का स्वाद थे। तभे तो एक घाव किताब हर हाथ में आते त आखरी पन्ना के सिरावत ले पढ़ुइया हर ओला छोड़ाए नहीं किताब ल छोड़ भी देते त किताब में लिखाए बात हर हृदय में गूंजत रही थे। नानपन ले जानत रहे कि छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते फिर धान के कटोरा काबर कहे जाते धान के बुआई मिंजाई कुटाई कारज हर कैसे होते कौन कौन किस्म के औजार खेती किसानी के कारज में होते और ओखर से जुड़े हाना जनौला कीरा मकौरा के ज्ञान पालेश्वर जी के किताब छत्तीसगढ़ के कृषक जीवन की शब्दावली में मिलते। उखर ये ग्रंथ में 11 अध्याय हावय 9000 छत्तीसगढ़ी आखरे में भराए हावय। छत्तीसगढ़िया किसान के जिनगानी ऊपर 1972 में सबले पहली पीएचडी पालेश्वर जी करीन है। ये अर्थ में कहे जा सकत है कि पालेश्वर जी के कलम हर छत्तीसगढ़ के इतिहास और किसानी जनजीवन ल जनवाए खातिर बड़का बूता करी सावय। जेन हर बताते कि जेकर हथेली में लकीर नहीं छाला रही से ओखरे नाव पालेश्वर रही से। छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक क्रांति के जनक दाऊ रामचंद जी देशमुख के संगे संग मोर पिताजी नारायण स्वामी मिश्रा हर खेती किसानी के नवा नवा बात ल बतावाए ओखरे मुँह ले सुने रहे हो खेती अपन से थी गाय न गरु सूज हरु ऐसन गोट बात के बेरा मा पालेश्वर जी के शोध प्रबंध छत्तीसगढ़ के कृषक जीवन के चर्चा जम के चलाए। छत्तीसगढ़ के 52,000 वर्ग मिल मा बसुइया किसान के नांगर और जांगर के ऊपर जी परान ले लिखे के जैन बुता पालेश्वर जी करीन हैं तेला सुने गुने और पढ़े के पाछू मन में यही बात हर आते कि जैन हर बरखा के बरसे पानी में भींजते तेन हर खाली अंगरखा ला बदलते फिर जैन हर पछीना में भींजते तेन हर पालेश्वर बन के नवा इतिहास गढ़ते। छत्तीसगढ़िया गुनी जन मन है पालेश्वर जी के ज्ञान ल देखत देखत ओला जियत जागत आखर कोठी पोथी पुराण इंसाइक्लोपीडिया कही थे। एक घाव कवि सम्मेलन में शामिल होए बर रामेश्वर वैष्णव जी और मीर अली मीर जी के संग जात रहें

0: तभे रद्दा मा खेत मा बड़ अकन कोंकड़ा कस चिरई मन दिखिन। ओ चिरई मन के ऊपर चर्चा करत ओमन ह पालेश्वर जी के किताब सुसक झन कुर्री सुरताले के चर्चा छेड़िन। तब मेहर जाने दूसर राज दूसर देश ले अवैया चिरई मन ला छत्तीसगढ़ी मा कुर्री कहे जाते। जिहां जन्मे जिहां के खाए पिए उहें के गुन गाबे बजाबे इही मा जिंदगी के सार हे। और नहीं तो 84 लाख जोनी मा सबले बढ़िया जन्म लेहे के हवय तेन ह बेकार हे। ऐसन संदेशा देवैया सियान छत्तीसगढ़ भुइयां के लाल हर 2 जनवरी 2016 के दिन सदा दिन भर विदा ले लेह रही से। डॉक्टर पालेश्वर हर छत्तीसगढ़ महतारी के ऐसन मयारुक दुलरवा बेटा आए जिन हर छत्तीसगढ़ी साहित्य जगत खातिर नवा रद्दा गढ़े के गुर अवैया पीढ़ी ल सिखा के सरक सिधारिन है। आखिर मा कलम के ऐसन पुजेरी ल विजय जोहार करत अपन कलम ल विराम देवत लिखत हों। नंगा लेहू कलम ल कलमकार ले तो ओहर लिख दी ही कविता तलवार ले।
1: अभी आप मन श्री विजय मिश्रा अमित ले वार्ता सुने। विषय रहिस छत्तीसगढ़ी भाखा साहित्य मा डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा के योगदान। कार्यक्रम मा आगू बढ़त हन औ आप मन ला श्री मानसी मौलिक ले कहानी सुनवात हन। शीर्षक हावे संगवारी के शर्त।
2: कलयुग मा पापी मन के संख्या अड़बड़ हावे कथे, ये गोट 16 आना सच नो है। अगर ऐसन होतीस ता विमल के गांधी फोकट भोजन भंडार कैसे चलतीस। बता देवन की धर्मी मन के संख्या घलो कम नहीं है। ये दुनिया मा कहां ले चाउर दार सब्जी नून तेल आथे कोई नहीं जाने। एकर से समझ आथे धर्मी के दान गोहार पार के थोरे आथे। कले चुप ढंग ले मनखे दान करके पुण्य कमा लेते। मोबाइल मा पैसा देवैया मनखे कमी घलो नहीं है। त सैकड़ों झन मुफत मा रोज खावत पियत विमल आओ ओकर संस्था ला गाड़ा गाड़ा आशीष देवैया मन के कमी नहीं है। ये काम ला विमल 5 झन ले शुरू करे रहिस। ओकर संख्या दिनों दिन बढ़त जात है। ओकर दूसर काम गरीब के सहायता करना है। वाह रे फूटहा किस्मत। ओकर सुवारी हा ये सब काम ले नफरत करते। मोर बर ओकर कना समय नहीं हावय। दूसर बर जीवत हावस कही के मैके मा रहत हावय। घर के दाई बाबू अपन खुद कतरो बेर ओकर खुशामद करके मान मनोवल घर लहुटे खातिर करिस। फेर उमा हा अपन मैके छोड़ ससुरार लहुटबे कहाँ करिस। उमा के कहना रहा है कि फालतू काम छोड़ आओ मजा मा जिंदगी मोर संग बिता। हमर घर में कोनो बात के कमी है ता मोला बता। मैं अपन दाई बाबू घर ले मंगवा दूँ। मगर विमल ओकर बात माने तब ना। मन मोटाव के कारण अतकी। फेर दोनों के बीच मया मान सम्मान के कभू डांड खिंचाए नहीं दिखाए। जब विमल ससुरार आते उमा ओकर बड़ सम्मान करते। अपन मैके छोड़े के बात मा अड़ के लंद फन काम झन कर कही थे। विमल के भरे पूरे परिवार मा 10-12 मन के हावय। ऊंचे रानू हा रसोई बनाए के काम करे। ओकर चाल ढाल पहने ओढ़े के ढंग देख विमल के दाई सुरजा पढ़े लिखे ठाड़ मोटियारी। कोनो बड़े घर के बेटी के लक्षण चिन्ह टोंक थे। बड़ सुघर रांदगढ़ के मड़ा देथस। मोला तो तैं काम वाले बाई कस लागस नहीं वो। माता विमल अव मैं एक के संग पढ़े हन। उमा भौजी मैके माँ बैठे हे मैं जानत हूँ। एक दिन गोठ बात माँ शर्त लगाए हन। मोला अगर अधिकारी बने बर मदद करबे तब भौजी ला मना के तोर घर लान दूँ। विमल कथे अव नहीं लान बे ता का करबे। ऐसन माँ तोला मोर संग बिहाव करे बर पर ही। मैं

शर्त मान के काम करथो, वाहर चतरी तोर चित और पट दोनों में जीत है, कहीं तोर सपना ये घर के बहु बने के तो नहीं। जान सुन के मोर बहुला मना के लानबेच नहीं, तब हो तोर जीत है। आखिर तोर कना ऐसन का जादू है, ते माँ बहु उमा तोर बात मानी। माता एक फोन करूँ भौजी दौड़त आही, कब्भू ये घर ले नहीं टरो कही। अच्छा का बोलबे महूला तो बता। माता ऐसन माँ मोर घाटा हो जही, जब समय आही खुदे तोला मालूम हो जही। रानू हमर घर भर के मन बहुला मना डरेन, नहीं मानिस तोर दरी कैसे मानही। माता मैं हार हूं ता बहु बन हूं, जीत हूं ता आफिसर, मोला अपन गरीबी से निकलना है। बाबूला सुख और खुद के घर सरकारी बंगला देना है, आफिसर बन के महिला मन के मान बढ़ाना, देश सेवा करत करत अपन जिंदगी सुधारना हावय। मोला तुम्हार घर के बहू बने के एको कनिक शौक नहीं है। रानू के साफ मन से शुद्ध विचार, देश सेवा के भावना, अधिकारी बने के चाह मां गरीबीन पर सुरजल दया आगे। एकर मृतालीन स्वभाव, मीठ भाखा, ईमानदारी, बिना कपट खुददारी बने लागिस। सुरजा सोचते ये टूरी हा ऐसन का बात कही, तेला सुन के वो हा अपन पति का नाम आ जही। यही बात समझ से परे लागत रहा है। माता बर्तन मांझ के लैका मल्ला ट्यूशन पढ़ा के ये दुनिया के बैरी मन के गलत आचरण ले अपन जान बचाए बर तुम्हार शरण आए हूँ। मोला पढ़े बर नानू कुरिया दे दू, तुम्हार उपकार जिंदगी भर नहीं भूलाऊ। रानू के आंखी बुटबुटा गे, अब तब आंसू चुहैया रहा है। रात मा मैं अपन घर मा पढ़ूं, अपन बाबू के सेवा करूं, कतरो झन मोर बर खोटा नियत करते, एक दिन ओ मल्ला जवाब देना है। तोर बाबू बर जेवन कैसे कब करबे, बाबू बर रोज गांधी मुफत भोजन भंडार के भात साग ले जात हूं। आधा घंटा काम करके मोला अड़बड़ शांति और पुण्य मिलते। ठीक है रानू, तोर सपना पूरे करे बर मोरो सहयोग रही। भंडार के आखरी कुरिया साफ सफाई कर उन्हें पढ़बे। विमल और उमा आपस में गोड़ बात होवत रही थे, जे माँ किसानी घर परिवार के हालचाल, लैका मन के पढ़ाई खान पान समय में करे के मया भरे सलाह शामिल रही थे। एक दिन उमा फोन में गरियात रहा, ए जी तोला शर्म नहीं लागा, एक झन टूरी संग तुम्हार लफड़ा दफड़ा के बात सुने भर मिलत है। ओ मोर कॉलेज के संगवारी आए, मोर गांधी मुफत भोजन भंडार मा काम करन लागथे, आना जाना लगे रथे, कोई जरूरत नहीं है ओकर संग गोठी आए के। नहीं ता एक दिन अंगरी धरत धरत चैघो हाथ ल धर ली, संभल के रहिबे। अब का करौ, तय मोला छोड़ दे हस, टाइम पास करे बर गोठिया लेथ, तेहा टाइम पास कथस, मोर सास हा सबो जीवन बनाए बर सौंप दे है। घर भर के मन मोहागे हो, मोर मइंता जे दिन भड़क जही वो दिन घर जाके ओकर चुंदी हपाट के नंगत कुचर दूं। विमल चिढ़ाए बर कथे, ऐसन गलती झन कर बे, बड़े जान अधिकारी बनैया है, तोला जेल में डार दी, जान डरे ओला अधिकारी बनाए के काम तोरे तो ही। दानी आदमी आस, तय हा फेर मैं ओकर चटनी बना दूं। अगर मोर घर द्वार मा आगी लगाही, मोर जोड़ी ल टोराही ता। उमा के भाखा आगी और रिस उगलत रहा है, विमल एति फोन ला काट दिस। ओती उमा अलकरहा बगिया गे, चार बच्चर के कठोर मेहनत, लिखाई पढ़ाई पेपर देके रानू जिला पंचायत सीईओ।

0: पनिस उमा अपन मोबाइल व्हाट्सएप मा राजेश आओ अपन प्री वेडिंग रंगीन फोटो उमा ला भेजिस। फोटो देख के उमा पसीना मा नहा डरिस। ओकर जी मा हाहाकार मच गे। पहली फोटो मा विमल के गोद मा मुड़ी रखे निहारत रहा। नीचे मा लिखाय रहा तोर जोड़ी संग मोर बिहाव होइया है, तोर मा ताकत हे ता अपन घर टूटे से बचा के दिखा। दूसर फोटो मा रानू के गोद मा मुड़ी रखे राजेश निहारत रहा। नीचे मा लिखे अपन पति के अच्छा काम ले आँखी मुंदे तेकर सजा भोग। तीसर फोटो मा एक दूसर के पीठ मा पीठ चटकाए बैठे रहाय। नीचे लिखे मैं तोर सौद बनहूँ तय मोर विमल ला तरसाय हस। चौथा फोटो मा रानू ला पाछू डहा ले विमल पोटारे रहाय। नीचे लिखे काली हमार भावर पर ही देखे बर आ जाबे। अतका सब उमा पढ़ के तुरंत सूट केस धरीस अपन ससुराल पहुँच सास ऊपर बरस थे। कहाँ है वो चुड़ैल हा ओला मार पीट के भगाना है। सुरजा अपन घर संभाल बेटी तोर संग हमन हावन ओला घर मा निंगन नहीं देन। सास सुरजा बड़ खुश होते। रानू हा बात सांची करके दिखा दिस। एति उमा घर मा बिहाव मड़वा सजावट कुछ नहीं देख पूछते मुला राजेश कना जाना है। माता बिहाव कहाँ मड़ा है तेला बता। ओकर पाँव पकड़ माफी मांग के अपन घर बचाहूँ। उत्की बेरा सरकारी गाड़ी ले अपन दू जन सहयोगी कर्मचारी संग रानू दंग दंग ले उमा के आगू ठाड़ होते। उमा रानू ला चीन के ओहा अपन जोड़ी के सही काम ला गलत ठहराए के सेती पछता थे। रानू के आगू हाथ जोड़ विनती करते बहिनी तेहा अधिकारी बन के दिखा डरे। मोला मोर जोड़ी लहुटा दे मैं तोर विनती करत हाँ। रानू उमा ला छाती में पोटार लीस। भौजी ना मैं तोर दुश्मन हो ना विमल संग मोर कोनो संबंध है। वो मोर मितान आए मैं शर्त जीत गयो। रानू थोकिन रुक के कथे जा तोर जोड़ी हा गांधी मुफत भोजन भंडार मा तोर अगोरा करत है। आज दोनों जन मिल के लोगन ला जेवन कराए बर परन घलो करे है। ड्राइवर हा रानू के इशारा पाके उमा ला गाड़ी मा बैठे के प्रार्थना करते ता वोहा गाड़ी में बैठते। जा भौजी मोला माता संग कुछ बात करना है।
1: संगवारी के शर्त ये कहानी आप मन सुनत रहो श्री मानसिंह मौलिक ले और पत्रिका के आखिर में कविता सुनात हैं श्री तोषण कुमार चुरेंद्र।

भारी तोरी गुनी लगाऊ। कुखरा की बाँक सुने सूरज पाँव पसारे, सूरज पाँव पसारे। बड़े भी नाच रही चिरगुन कोयली कुह की मारे, कोयली कुह की मारे। कुखरा की बाँक सुने सूरज पाँव पसारे, सूरज पाँव पसारे। बड़े

हारी तोरी गुण लगाऊ। छत्तीसगढ़ महतारी तोरी महिमा हावे भारी तोरी गुण लगाऊ। तोरी को राम लहरावे अर पपैरी धारे अर पपैरी धारे। महानंदी सोंढुरी के झुमरथे कसारे झुमरथे कछारे। तोरी को राम लहरावे अर

रुखराई जंगल झाड़ी तोरेच सिंगारे हे, तोरेच सिंगारे हे। देवधामी तीरथ बरत हीरा के भंडार हे, हीरा के भंडार हे। रुखराई जंगल झाड़ी तोरेच सिंगारे हे, तोरेच सिंगारे हे। देवधाम

0: अब मैं हर दूसरा कविता सुनाए बर जात हूँ, जेकर शीर्षक है पेड़ और आला छंदमा रचना हवे।
1: पेड़ लगावा जुर्मिल संगी अमृत छैया हे बगराए, पानी बादर झुर झुरे लावे धरती को राहे हरियाए, पानी बादर झुर झुरे लावे। पेड़ बिना है सुनना जग ये संत सुजानिक करो विचार, कैसे पानी हवा बचाबू होवत हवे हाहाकार, कैसे पानी हवा बचाबू। पेड़ लगाथन कहिके भैया दे मारे फोटो खिंचवाए, बिन पानी सब सुन्ना दीदी लगे पेड़ ला कोने बचाए, बिन पानी सब सुन्ना दीदी। पेड़ बचावे जिंदगी सबके चेते गरौ गामित मितान, हरियर धरती के को रामा आही तभी नवा बिहान, हरियर धरती के को रामा। धरती हरियर दुनिया हरियर मानो संगी मोरो बात, शुद्ध हवा पानी मिल ही तब हो ही जब झुर

0: चादर झुर झुर लावै, धरती के कोरा हरियाए, पानी बादर झुर झुर लावै, धरती के कोरा हरियाए, पानी बादर झुर झुर लावै।
1: अभी आप मन श्री तोषण कुमार चुरेन्द्र ले कविता पाठ सुनत रहो। एकरे संग आज के छत्तीसगढ़ी समन्वित कार्यक्रम मोर भुइया के आज के ए अंक ले मोला इहे विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण सेवा से।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। शेखर रविजियानी और सलीम मर्चेंट, साथ ही नीति मोहन की आवाजें हैं।

0: सन ऑफ सरदार, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। समीर अनजान के बोल थे, तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में एक था टाइगर फिल्म से ये गीत। कौसर मुनी ने इसको लिखा है और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

एक था टाइगर, इस फिल्म से आपने अभी ये गीत सुना, तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

का कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी इस फिल्म से, ये गीत जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है, धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जब तक है जान फिल्म से श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का गाया गीत। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत समीर के बोल साजिद वाजिद का संगीत।

राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत आपने सुना। समीर के बोल थे साजिद वाजिद का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, आपको बता दें कि 9:30 पर सुबह यानी अब से कुछ ही देर में और पुनः रात को 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। कार्यक्रम सुनना नहीं भूलिएगा आज के फनकार। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए

0: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस

दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि एनएसडी का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किट में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके।

0: नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।
1: खो गया, गुम हो गया, वक्त से चुराया था जो।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। और दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी

0: शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार हो रही ये बैठक क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करेगी और क्षेत्र में सुरक्षा तथा विकास को नई दिशा देगी। श्री साय ने कहा कि कभी नक्सली हिंसा की चुनौतियों से जूझने वाला बस्तर आज शांति, सुरक्षा और विकास की नई पहचान बना रहा है। ऐसे समय में देश के वरिष्ठ नेतृत्व और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति बस्तर के बदलते स्वरूप और बढ़ते विश्वास का प्रतीक है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने कल बस्तर जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों में बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने बस्तर प्रवास के दौरान कल जगदलपुर में अमर वाटिका पहुंचकर के विरुद्ध संघर्ष में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कल जगदलपुर में शहीदों के परिजनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों और नक्सल पीड़ितों के साथ मुलाकात और चर्चा की। श्री शाह ने खुशी जताते हुए कहा कि 3 पीढ़ियों तक जिस नक्सलवाद को समाप्त नहीं किया जा सका, उसे हमारे वीर जवानों ने मात्र 3 वर्षों में समाप्त कर दिखाया। उन्होंने कहा कि माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था, बल्कि यहां विकास नहीं होने का कारण ही हथियारबंद नक्सलवाद था। अब हथियारबंद नक्सलवाद समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने विश्वास जताया कि देश के सभी आदिवासी संभागों में बस्तर सबसे विकसित आदिवासी संवाद बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अपने बस्तर दौरे के दौरान कल शाम जगदलपुर स्थित बादल अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने बस्तर के संघ कार्यक्रम में बस्तर के आदिवासी लोक कला और संस्कृति का आनंद लिया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम है, वहां प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मुख्य संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास मिले म्यूल खातों से करीब 5 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। बिलासपुर जिले में पुलिस और एसीसीयू की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। सभी महिलाएं मटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
3: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

समय चक्र के घेरे में सारा ब्रह्मांड है, क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। अतीत, भविष्य और वर्तमान सभी समय से बंधे हैं। समय का सम्मान अनुशासन सिखाता है, और अनुशासन से ही होती है देश और समाज की प्रगति।

0: इसीलिए वक्त की कद्र करना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये तब और भी जरूरी हो जाता है जब नागरिक शासकीय सेवक हो। छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही के लिए ई ऑफिस प्रणाली की शुरुआत की है। डिजिटल तकनीक पर आधारित ई ऑफिस प्रणाली सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। सरकार की ये पहल छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया सवेरा लेकर आई है, यानी अब सब कुछ हो गया है ऑनलाइन।
1: मैं उत्तम प्रसाद रजक, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर ऑफिस रायपुर से बोल रहा हूँ सर। ये ई ऑफिस शासन की डिजिटल कार्य प्रणाली है, जिसके माध्यम से सरकारी कार्यालयों में फाइलों एवं पत्राचार का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है। रायपुर जिले सहित लगभग समस्त छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ाने के लिए यह प्रणाली लागू की गई है। इसके संचालन हो जाने से जो उच्च अधिकारी हैं फाइलों का ट्रैकिंग करने में उनको मदद मिलती है, और ई ऑफिस में जो फाइल आगे बढ़ती है उसका अनुमोदन जो है तत्काल द्रुत गति से होता है, और इससे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की भी सुविधा मिल जाती है। इससे शुरू हो जाने के पश्चात जो है लगभग जो सुविधाएं मिल रही हैं वह है फाइलों का ऑनलाइन संचालन एवं ट्रैकिंग, समय की बचत और कार्यों का शीघ्र निपटान, नागरिक सेवाओं का डिजिटल माध्यम से लाभ, जैसे कि अभी सेवा सेतु पोर्टल लागू किया गया है जिसमें नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएं जो है जो पूर्व मिल रही थी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में उससे ज्यादा सुविधाओं मिल रहा है। मैंने एक प्रकार से एक मंच एक पोर्टल के माध्यम से लोगों को नागरिकों को जो है काफी डिजिटल माध्यम से लाभ मिल रहा है। ई ऑफिस से विभागों में जो फाइलों का आदान प्रदान है वो तेज गति

होता है, ऑनलाइन के द्वारा अनुमोदन होता है, और डिजिटल सुविधा, डिजिटल हस्ताक्षर की भी सुविधाएं हैं। इसी अधिकारी जो है अपने आधार कार्ड या अपने मोबाइल नंबर की सहायता से ओटीपी प्राप्त करते हैं और अनुमोदन करते हैं। ई प्रणाली से जो रिकॉर्ड है वो भी सुरक्षित रहती है, आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। इसका एक ई ऑफिस में एक और महत्वपूर्ण है, वो है पेपरलेस, जो जिसको हम इको फ्रेंडली कह सकते हैं। कागज का बचत तो होता ही है, साथ ही साथ ये एक प्रकार से पर्यावरण के दृष्टि से भी ज्यादा सुरक्षित, पर्यावरण

फाइल्स हैं वो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से डिजिटल पत्राचार को इससे बढ़ावा मिल रहा है। और जैसे कि हम नए युग में रह रहे हैं, तो तकनीकों का समावेश से ई ऑफिस जो है निश्चित रूप से ही सभी माने विभागों को अपने जवाबदेही तय करने में ज़्यादा सुविधा मिल रहा है। और ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ के लगभग लगभग सभी विभागों में ई ऑफिस जो है लागू कर दिया गया है, जिसमें मुख्यतः जो है सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, लोक निर्माण विभाग। इस प्रकार से ई ऑफिस जो है हमारी माने जो ऑफिस कार्य में एक महत्वपूर्ण रोल जो है अदा कर रहा है। और लगभग लगभग सभी कर्मचारी जो है इससे जागरूक होकर के अपने कार्य जो है जवाबदेही ज़्यादा अच्छा से कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही कोई अधिकारी पहुंचता है तो सर्वप्रथम वो अपने कंप्यूटर मॉनिटर को ओपन करता है, और ओपन करने के पश्चात देखता है कि क्या क्या पेंडिंग है, किसको निपटाना है, किसको आगे फाइल को आगे बढ़ाना है। इस प्रकार से यह ज़्यादा पारदर्शी है, ज़्यादा जवाबदेही है, और यह ऑफिस जो है एक शासन की महत्वपूर्ण योजना है, और यह शासन के योजनाओं को और क्रियान्वयन को पारदर्शी रूप से और ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के प्रति जवाबदेही तय करती है।

0: ऑफिस अनुशासन और सुशासन का आदर्श रूप है। इस ऑनलाइन सुविधा ने पेपरलेस वर्क को गति प्रदान की है, साथ ही एक कार्यालय को दूसरे कार्यालय से सरलता और शीघ्रता से जोड़ा है। कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच की दूरी ई ऑफिस ने कम कर दी है। यहाँ तक कि हस्ताक्षर भी डिजिटल हो गए हैं, इसीलिए फाइलों के ढेरों के निराकरण में सहूलियत हो गई है। आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही हो रही है और समय सीमा में ही हो रहे हैं सारे काम।
1: मैं विश्वास कुमार, डिप्टी कलेक्टर जिला राजनांदगांव में पदस्थ हूँ। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस के महत्व की अगर बात करें तो ई ऑफिस शासन की कार्यप्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस लागू होने से सरकारी कार्यों में गति और पारदर्शिता दोनों बढ़ी है। पहले ऑफलाइन फाइलों के संचालन में काफी समय लगता था, लेकिन अब ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग, डिजिटल सिग्नेचर और उसके त्वरित अनुमोदन से सुविधा से कार्य शीघ्रता से हो रहे हैं। इससे आम नागरिकों को समय पर सेवाएं मिल पा रही है और साथ ही साथ कार्यालयों में जवाबदेही भी बढ़ी है। अगर हम ई ऑफिस की सुविधाओं की बात करें तो ई ऑफिस जब से शुरू हुआ है, उसके शुरू होने से कर्मचारियों और अधिकारियों को कई सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि अब फाइलों को ऑनलाइन भेजा और देखा जा सकता है, जिसे किसी भी स्तर पर हम ऑनलाइन ई ऑफिस के तहत कार्य की स्थिति को तुरंत पता लगा सकते हैं। दस्तावेजों के सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ कार्यालयों के बीच समन्वय भी आसानी से हो रहा है। इससे समय और जो शासन के संसाधन है, इन दोनों की बचत हो रही है। ई ऑफिस का पेपरलेस कार्यप्रणाली में क्या महत्व है, अगर हम बात करें तो पेपरलेस कार्यप्रणाली में ई ऑफिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे कागज की खपत कम हो रही है और रिकॉर्ड भी सुरक्षित रह रहे हैं, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण को भी इसमें बढ़ावा मिल रहा है। डिजिटल माध्यम से कार्य होने से फाइलों के गुम हो जाने या फिर उनके विलंब की जो समस्या थी उसमें कमी आई है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बन रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस का उपयोग राज्य शासन के विभिन्न विभागों में किया जा रहा है, जैसे कलेक्ट्रेट, राजस्व विभाग और शासन के अन्य महत्वपूर्ण सभी विभागों में ये कार्यालय शामिल है। राज्य

0: ई ऑफिस प्रणाली तकनीक की दुनिया का एक नायाब शाहकार है। इससे सूचनाओं का आदान प्रदान तो हो ही रहा है, शासन की कार्य प्रणाली को भी स्पष्ट आधार मिल रहा है। इस प्रणाली का उद्देश्य ही ये है कि समाज प्रशासन के करीब आए और सारे कामों का निराकरण जल्दी से जल्दी जमीनी स्तर पर ही हो जाए। ई ऑफिस जनता और प्रशासन दोनों के लिए ही वरदान है। पारदर्शिता का ये एक अनुपम उदाहरण है।
1: मैं नितेश चक्रधारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रेस प्रकोष्ठ में संलग्न हूँ। अभी वर्तमान में सरकार ने छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस लागू किया है। ई ऑफिस क्या है, इस चीज को हम समझते हैं। ई ऑफिस एक डिजिटल कार्य प्रणाली है जिसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। यह जो पारंपरिक फाइल की व्यवस्था होती है उसको ऑनलाइन प्रणाली में बदलता है। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन प्रणाली में आने से जवाबदेही सुनिश्चित होता है और सुशासन और पारदर्शिता की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसका महत्व यह है कि सरकारी फाइलों का डिजिटल प्रबंधन प्रारंभ हुआ है, अधिकारियों के बीच में कार्यों का तेजी से आदान प्रदान हुआ है, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आई है, पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत अधिक बढ़ा है, रिकॉर्ड सुरक्षित रखना है, भ्रष्टाचार और देरी में कमी लाती है, मतलब हम जीरो टॉलरेंस की तरफ बढ़ते हैं। यह एक डिजिटल गवर्नेंस का एक मजबूत स्तंभ माना जा सकता है। इससे बहुत सी सुविधाएं हमको मिल रही है। अब इनकी हम सुविधाएं की बात करें तो हम इसको तीन स्तर पे बांट सकते हैं कि भैया कर्मचारियों को क्या सुविधा मिल रही है, आम नागरिक को क्या हो रही है और प्रशासन को इससे क्या फायदा हो रहा है। तो पहले तो अगर हम कर्मचारी और अधिकारियों की बात करें तो फाइल ऑनलाइन भेजने और देखने की सुविधा उपलब्ध होती है। इससे ये होता है कि कोई अधिकारी अगर दूर है तो वह ऑनलाइन माध्यम से अपने फाइल को ट्रैक कर सकता है, किसी भी समय और स्थान से कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। अभी हाल में ही एक हमारे

सर हैं एक विभाग के, वो विदेश में थे, तो विदेश में रहने से वो करीब 10 दिन विदेश में थे, तो 10 दिन रहने से तो फाइल तो रुक जाती, लेकिन वह जब विदेश में थे तो वह विदेश से ही आसानी से वह अपने फाइलों को ट्रैकिंग कर पाए। तो फाइल को ट्रैकिंग करना बहुत आसान होता है और कार्य में समय बहुत की बचत होती है। दूसरी, अगर हम आम नागरिकों की बात करें तो सरकारी कार्यों में इससे तेजी आई है। आवेदन और शिकायतों का बहुत शीघ्र निपटान होता है, पारदर्शी प्रशासन होता है और कार्यालयों का चक्कर कम लगाना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से दृष्टि से देखें तो यह कागज और खर्च में कमी लाती है, पर्यावरण संरक्षण को बहुत बढ़ावा दे रहा है, रिकॉर्ड सुरक्षित और व्यवस्थित रहता है और दूसरा, कार्यों की निगरानी भी बहुत आसान होती है। इसके महत्व, ई ऑफिस का आज महत्व देखें तो यह सबसे पहले है कि हम एक पेपरलेस कार्यालय की तरफ हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। पेपरलेस प्रणाली एक सरकारी और आधुनिक और सुरक्षित प्रभावी बनाता है। दूसरा, यह कागज की खपत को तो कम करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। फाइलों के खोने की समस्या से निजात मिलती है। फाइलों के खोने की जैसे कई बार दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, अगर उनका डिजिटल संधारण रहता या डिजिटल फाइल रहती तो उनके जलने से और उसके प्रभाव नहीं होता, मतलब वह चीज आसानी से हमको मिल पाता। तो ऐसे घटनाओं से बचने के लिए भी एक डिजिटल संधारण बहुत अनिवार्य है शासकीय कार्यों में। डिजिटल रिकॉर्ड को बहुत लंबे समय तक भी हम सुरक्षित कर सकते हैं हमारे डाटाबेस में, और दस्तावेज खोजने में कम समय लगता है। जब बड़ी बड़ी नस्तियां फाइलें रहती है तो 4 साल 5 साल बाद जब उनकी दोबारा आवश्यकता होती है तो वह बहुत जीर्ण शीर्ण भी हो जाती है और उसको ढूंढने में बहुत समय लगता है, उसकी ट्रैकिंग प्रणाली थोड़ी सी कठिन होती है। वह ई ऑफिस प्रक्रिया में यह बहुत आसान है और इसे कार्यालय में तेज और बहुत व्यवस्थित व्यवस्था होती है। ई ऑफिस प्रणाली आज छत्तीसगढ़ में लगभग 87,228 अधिक से अधिकारी और कर्मचारी इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम इसके फाइलों के मूवमेंट के बारे में बात करें तो जब से लागू हुआ है तब से 5,46,903 फाइलों का मूवमेंट हुआ है, इसे हम मान सकते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे कितनी बचत, पेपरों की बचत हुई है, डिसीजन लेने में कितनी जल्दी इसका डिसीजन हुआ है। दूसरा, ये को लगभग आज छत्तीसगढ़ के सभी विभागों में, छत्तीसगढ़ के जितने भी सभी विभाग है उस सभी विभागों में ई ऑफिस को लागू कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो, सभी, और न केवल जिला स्तर के भी नीचे जितने ऑफिस हैं उन सभी में ई ऑफिस प्रणाली को दुरुस्त किए लागू किया गया है। और इसको लागू किया गया है, यह केवल नहीं है बल्कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इससे लगत सतत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण की व्यवस्था NIC जो डिजिटल नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी के इजाज़ से NIC और हमारी शासकीय टीम चिप्स, ये दोनों मिलके पूरी सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और ये विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण हो रहा है। और इस प्रशिक्षण का फायदा ये हो रहा है कि आज सभी अधिकारी कर्मचारी अपना ई ऑफिस से कार्यों का संचालन लगभग प्रारंभ कर चुके हैं और निश्चित तौर पर यह एक सुशासन की एक नई और आधुनिक परिभाषा हम लिखने के लिए तैयार है अपनी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार।

0: छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस यानी सुशासन प्रशासन की आधारशिला है ई ऑफिस। रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य हो या फिर डेटा कलेक्शन, सब कुछ आसान हो गया है ई ऑफिस की बदौलत। आज के डिजिटल युग में लंबी कागजी प्रक्रिया की जगह तकरीबन सब कुछ हो गया है ऑनलाइन। बात आवश्यक प्रमाण पत्रों को बनवाने की हो या बच्चों के शैक्षणिक कार्यों की, ई ऑफिस सब जगह एक जिम्मेदार मददगार के रूप में उपलब्ध रहता है। ई ऑफिस को ज्ञान का भंडार कहा जा सकता है। जनगणना जैसा बड़ा काम भी आज डिजिटल माध्यम से हो रहा है। ई ऑफिस सिर्फ एक सुविधा ही नहीं बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत का भी एक अच्छा जरिया है।
1: मैं दीप्ति बघेल, सहायक शिक्षिका शिक्षा विभाग से हूँ। आज का समय डिजिटल युग का समय है। पहले जिन कार्यों को पूरा करने में कई दिन, कई चक्कर और बहुत अधिक कागजी प्रक्रिया लगती थी, वही काम आज इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल की सहायता से कुछ ही मिनटों में हो रहे हैं। यही आधुनिक व्यवस्था ई ऑफिस कहलाती है। ई ऑफिस का अर्थ केवल कंप्यूटर पर काम करना नहीं है, बल्कि इसमें लोगों का समय और मेहनत दोनों बच रहे हैं। यदि शिक्षा विभाग की बात करें तो आज स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति, परीक्षा परिणाम, छात्रवृत्ति पोर्टल, डिजिटल क्लास, स्मार्ट बोर्ड और ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएं शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। प्रशासनिक कार्यों में भी ई ऑफिस ने बड़ा परिवर्तन लाया है। आज फाइलें ऑनलाइन भेजी जा रही हैं, रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा रहे हैं और कार्यों की निगरानी पहले से अधिक सरल हो गई है, जिससे जानकारी जल्दी और व्यवस्थित रूप से एकत्र हो रही है। डिजिटल इंडिया जैसी पहल के माध्यम से ऑनलाइन कार्य प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका लाभ यह है कि कई सरकारी कार्य घर बैठे ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इस प्रकार ई ऑफिस केवल सुविधा ही नहीं बल्कि समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत का भी एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। ई ऑफिस और डिजिटल तकनीक आज के समय की आवश्यकता है। यदि हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो हमें नई तकनीकों को सीखना और अपनाना होगा। विशेष रूप से शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को उसका सही और सुरक्षित उपयोग भी सिखाएं। इंटरनेट, ई ऑफिस और AI ने हमारे जीवन को सरल, तेज और आधुनिक बनाया है। यह हमारे विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। आवश्यकता केवल इस बात की है, हमें इसका उपयोग मानव कल्याण और समाज की प्रगति के लिए करना चाहिए।

ई ऑफिस प्रणाली ने पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता को एक साथ प्रभावित किया है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ एक मजबूत पहचान के साथ उभरा है। ई ऑफिस ने प्रशासनिक व्यवस्था की कई अलग अलग कड़ियों को एक सूत्र में पिरो दिया है। इससे जन सुविधाएं आसानी से सब तक पहुंच रही है, शहर, कस्बे या फिर हो गांव। ई ऑफिस की छत्र छाया में सब फल फूल रहे हैं। अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है सारी योजनाएं। यही तो है सर्वांगीण विकास की परिभाषा। भारत के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ विश्वास और प्रगति की एक नई गाथा लिख रहा है। ई ऑफिस की संवेद किरणों के साथ सबको लेकर अपने साथ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नए तराने। नए तराने कार्यक्रम में लीजिए पेश है अरिजीत सिंह के स्वर में मनोज मुंतशीर का लिखा, जीत गांगुली का संगीतबद्ध किया, सनम रे फिल्म का ये गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला गीत सईद कादरी ने लिखा है, मिथुन का संगीत है, पेश है की एंड का फिल्म का ये गीत।

0: नए तराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
1: ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर के सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। उमाशंकर पांडे का कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिले में हो रहे लगातार सड़क निर्माण एवं पर्याप्त साफ सुथरे चौक चौराहों के साथ साथ आप सभी बिलासपुर वासियों की सजगता एवं यातायात पुलिस के प्रयास से शहर से लेकर गांव गांव में भी अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले में यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, वाहन यात्री वाहक हो या मालवाहक, सभी की अपनी एक निश्चित माल या सवारी ढोने की क्षमता होती है और इसी क्षमता के अनुसार ही उस वाहन की आदर्श एवं मानक बनावट होती है, जिसे संबंधित अधिकृत कंपनी के द्वारा हर दृष्टि से जांच परख कर आकार आदि को अंतिम स्वरूप दिया जाता है। किंतु कुछ वाहन मालिकों के द्वारा क्षमता से अधिक माल या सवारी परिवहन के लिए ऐसे वाहनों के बनावट से छेड़छाड़ या बदलाव किया जाता है, जैसे सवारी ऑटो में स्थायी सीट के सामने अतिरिक्त सीट बनाकर क्षमता से अधिक सवारी ढोते हैं। इसी प्रकार पिकअप, मेटाडोर या ट्रक आदि में डाला

0: प्रणाली को अधिक ऊंचा कर वाहन की निर्धारित क्षमता से अधिक माल परिवहन किया जाता है। वाहन को मानक आकार से अमानक बना दिया जाता है। ऐसा करने से सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है। हर पल दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दंडनीय भी है। अतः अपने वाहनों की बनावट पर फेरबदल या छेड़छाड़ हरगिज न करें, यह घातक भी हो सकता है। मित्रों, इसी प्रकार देखा जाता है प्रायः लंबी दूरी के मालवाहक या यात्री वाहक वाहनों में एक ही चालक रहते हैं, जबकि मानव स्वभाव के अनुसार सभी को काम के साथ साथ पर्याप्त नींद या विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि एक ही चालक लगातार वाहन चला रहा है तो यह घातक है। अनेकों बार इसी स्थिति के चलते चालक को झपकी आने से कई गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसलिए लंबी दूरी के वाहनों में हमेशा दो चालक रखें, अन्यथा विधि सम्मत कार्यवाही भी आपके विरुद्ध की जा सकती है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
2: कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को 7:30 बजे से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 21 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा नील हरित काई और हरी खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 21 मई और 22 मई 2026 को 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और अब रुख करते हैं नए तराने कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, लेकिन उससे पहले एक सूचना। फोन इन कार्यक्रम के लिए हमारे टेलीफोन नंबर में परिवर्तन हुआ है, इसलिए श्रोता कृपया इन नंबरों पर फोन लगाएं। हमारा फोन नंबर है 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। सूचना समाप्त हुई।

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स।

0: मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: इस संदेश से पहले आपने सुना श्रेया घोषाल और बोनी चक्रवर्ती के स्वर में स्वानंद किरकिरे के लेखा और शांतनु मोइत्रा का संगीतबद्ध किया बॉबी जासूस फिल्म का गीत।

अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीप्रदा के गाए टू स्टेट फिल्म के इस गीत के साथ ही नए तराने कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम

0: कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
0: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
0: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
0: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
0: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी,
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
0: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
0: जी।
1: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
0: जी।
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए
0: जी। यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
1: जी।
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात
1: जी। विमृषि श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं उतने कहीं और नहीं पाए जाते
0: जी।
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमृषि से
0: जी। श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षावनों के पेड़ों की

0: चई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षावनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षावनों की। श्रोताओं, वर्षावन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
0: जी,
1: जितना हो सकता है, पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का।

0: हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
2: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
3: सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो पीला हूं।
3: कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे, गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो लाल हूं।
3: घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूं।
2: बेचारा जोजो।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
0: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी।

0: प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना, लाओ लाओ। रुको रुको रुको, मैं
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हाँ?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी।

0: गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ, मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
4: नहीं करने देंगे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
5: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
5: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं?
5: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
2: हाँ,
5: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
5: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
4: हाँ, हम सब तैयार हैं।
1: नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की

0: 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
2: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
4: अरे क्या कर रहे हो?
5: मेरा मुंह के ताक रहे हो? बजाओ शुरू, मारो
4: पेड़। अरे भाई कौन है? रुको, इस पर चिपक जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
5: आगे बढ़ो।
4: अरे कहां से?
5: दो मिनट की बात तो मैं बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू, काटो पे।
4: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
6: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
4: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
5: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
3: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
5: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
3: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
3: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।

कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। दिन के 11:30 होने को हैं। आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण सेवा से।

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत, जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमत 90 पैसे और डीजल की कीमत 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। और बिलासपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में अब से कुछ देर पहले मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और 4 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ ही पुलिस तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर में पहली बार हो रही ये बैठक क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि ये बैठक अंतर्राज्यीय समन्वय को मजबूत करेगी और क्षेत्र में सुरक्षा तथा विकास को नई दिशा देगी। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों के छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 96 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से रायपुर में अब पेट्रोल 104 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। खाद्य विभाग ने सभी ऑयल कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिन पेट्रोल पंपों पर स्टॉक कम है वहां प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर जिले में पुलिस और ACCU की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। सभी महिलाएं मटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों

में खपाने की तैयारी में थीं। पुलिस ने गांजे के साथ दो इलेक्ट्रिक ऑटो भी जब्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 46,75,000 रुपए आंकी गई है। जांजगीर जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में आज एक कार और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा अकलतरा के खटोला गांव में हुआ। बताया गया है कि बाइक में चार युवक सवार थे, जो कोटगढ़ गांव के निवासी हैं। हादसे के बाद घायलों को अकलतरा अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों गंभीर घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया है। कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में बीती शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि सात से अधिक लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब सतरेंगा के कारीघाट से पिकनिक मनाकर लौट रहे युवकों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आज सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ये हादसा रेलवे पटरी पार करते समय हुआ है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम ने उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। ये परीक्षा 1 जून से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज फिर से बढ़ोतरी की। पेट्रोल की कीमत 90 पैसे और डीजल की कीमत 96 पैसे प्रति लीटर बढ़ी। और बिलासपुर पुलिस ने 90 किलो गांजे के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं। आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण सेवा से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
3: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच

0: उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
1: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गयी, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज है और शिवराम का है।

0: प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम, प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में, प्रदीप के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है, और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है, और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार, आशा भोसले की आवाज में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से। प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से। प्रदीप की आवाज, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में, प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर में हम प्रति रोज आपको देते हैं एक बहुत प्यारी सी इबारत, और उस इबारत के साथ हम चुनते हैं कुछ नगमे। कभी कभी आपके और हमारे नगमे मिल जाते हैं और बन जाता है बड़ा प्यारा सा सुखद संजोग भी। तो चलिए हम चलते हैं आज की इबारत की ओर। इबारत कुछ ऐसी है कि चलो ना एक याद जीते हैं, अपनों की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है और फिर सुकून भरी दुनिया। शायद यही जीवन है आपका, हमारा, हम सबका।

और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति, दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नजर से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई, नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार, संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पा लेने की लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पा लेना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बनते हैं और फिर उसी मिट्टी में एक नए जीवन की खाद बन जाते हैं। जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र उठते रोते मुस्कुराते नई नई जिज्ञासाओं के साथ किशोरावस्था में आकर हार्मोन के बदलाव के साथ अपनी गलतियों से सीखते हुए और स्वयं की पहचान को निश्चित करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद के साथ 20 से 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते हैं, जो करियर, रिश्तों और जिम्मेदारी के बोझ को ढोती हुई 40 के पार होती है। और इस दौर में बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप बूढ़े, लेकिन हम इन दो पीढ़ी के बीच का पुल बन जाते हैं। फिर आई 60 के बाद की पारी, जिसमें खुद को समेटने का वक्त शुरू होता है। शरीर धीमा पर समझ बिल्कुल सा, पूरे जीवन की यादों को एक साथ खूबसूरत, सहज और अंत की कामना करते हैं। मृत्यु अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता है। बिल्कुल सही बात आपने कही है और हम आपको सौंपना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। बस एक प्रश्न है मेरा आपसे कि ये जो जीवन है, इस जीवन को लेकर आपकी अवधारणाएं क्या हैं, यानी जीवन कितना सत्य है आपके लिए। ये बात आप सब बहुत अच्छे से हमें यहाँ बता रहे हैं और ये बताते बताते बस इतना बता दीजिए कि ये वाला जो गीत है जो हम आपको सौंप रहे हैं, ये कौन सी फिल्म का है, बस इतना बताइए और जल्दी से सुन लीजिए ये गीत।

जीवन के सफर में राही, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी की बोल एस डी वर्मन के संगीत के साथ सुन रहे थे ये सुंदर सा गीत हम। और हमने आपसे पूछा कि ये गीत कौन सी फिल्म का है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और केवल मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं, आपने बाकी उत्तर भी दे दिए। कहा फिल्म मुनीम जी से है, आवाज लता मंगेशकर की है, देवानंद नालिनी जयवंत पर इसे फिल्माया गया है। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, जीवन एक शाश्वत सत्य है जो एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। बिल्कुल सही बात है। और इस सत्य का सबसे पहला सत्य जो होता है वो होता है हमारा जन्म, और जन्म के बाद हमारी सुंदर सुंदर अटखेलियां, मस्तियां और बहुत सारी शैतानियां। और उन शैतानियों के बीच में हमें याद नहीं होता कि हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं। हम बड़ा छोटा कद में, रंग में, रूप में, यौवन में किसी भी चीज को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ, जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन, जवानी और वानप्रस्थ, यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपनों, अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद, नादानियां, शैतानियां, और फिर उसके साथ किताबों की दुनिया, दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है, और लेकिन उम्र के साथ, दोस्तों के साथ, करियर, जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है, परिवार के रूप में होती है, जहां हंसी खुशी, सुकून, शांति दूरियों का संजोग बन जाता है, और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी, और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर, हमारे कौश होता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है, अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी, संगी, साथी, सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है, और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं। और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है। शैशव काल की मुस्कान, किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है, तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना थी परिपक्वता, ना ही बचपना, ना ही यह मोड़ आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल, विवाह से गृहस्थ स्तंभ की ओर कदम पड़ते हैं। आज कि एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता, तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया, तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत। वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है, ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है, जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले, यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने

0: फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश किवोल और सचिन देव बर्मन की आवाज बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली, ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीजों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा रे, ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए। ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। वैसे ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी जोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत जोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ भी आपको हो गई होगी। ऐसे काम करने नहीं चाहिए, भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी, अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था। सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहां पे पतंग लेने ना गया हूं। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खो खो, धूम खेले हैं। क्या बात है, बचपन की यादें ताजा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे। क्या बात है, हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है, सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था, वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे। उसके सिर पर झूले की कील लग गई और बहुत सारा खून बहने लगा। मैं उसे लेकर मंदिर में गई और शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज्यादा बिगड़ गई घर आने पर, बहुत पिटाई हुई। बहन के सिर पर 7 टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है, हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियां की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पहिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियां हैं और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री है वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।
1: मन के सच्चे

बच्चे मन के सच्चे ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो जरूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई। बदमाशियां तो हमने कर ली, तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे, पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडिया मार पड़ेगी, इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नजदीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो उन्होंने मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल नहीं गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी, और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थी जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था, और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे, दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी, आहा क्या मजा आता था। तो ये बात तो बड़े मजेदार होती है, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं।

बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है। खेलना, खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं, स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले जमाने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था, तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपए निकाले थे और पतंगी डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे। और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, वो मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी। कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ, वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई, ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुंच गई। बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है, मैं नीचे उतरा। माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी कौशलता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था। पड़ोस की गुलाटी अंकल के आते में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे। खाने से मतलब नहीं था, अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियां हुई। जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहां पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए, अपनी शरारतें और शाबाशियां बचपन की जरूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े, बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है। एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है। जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियां खोजने में, किसी की फूलों जैसी हजी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है। बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है। इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भोगता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं। हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहां पर इमली और आम के पेड़ थे। उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहां रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं। अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे टीवीएस चलाई, लेकिन

मेरे दो छोटे भाई बहन, उनने भी ट्राई किया। गाड़ी रेस होती थी, ज्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबने बाद में, भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है ऐसा बारिश होता लिखते, पर शरारत जरूर याद है, और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहां 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब बारूद सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था, सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे वारे में मिर्ची की गंध भर, दुर्गंध भर जाती थी, वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे। तब मम्मी मारती नहीं थी। कोई बात नहीं, हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया है। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे, और ₹50 बहुत बड़ी चीज होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौणावस्था, इस उम्र तक आते आते यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हम उम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में, सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है, स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नकसीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गईं, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हम दो सहेलियों ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशोता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आंखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे, और सबसे सबके से कहते थे हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों दोस्त तो रस्सी को ऊपर कर देते थे, राहें गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े, ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता 7वीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में, हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया, बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए, ये गीत में आवाज किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीजन से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है, और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं, बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर। और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

0: हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुंचते पहुंचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ, सुरीला सफर में, सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी परदेश पर आधारित है। हम सभी परिवार के लोग सदियों से बेहतर जीवन, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में अपने घर, परिवार और देश को छोड़कर परदेश जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है परदेश में अच्छा अवसर मिलेगा और मिलता भी है। आकर्षक अवसरों के द्वार खुल जाते हैं, हम अपनी रुचि के अनुसार क्षेत्र चुन सकते हैं। इसके साथ ही परदेश में जीवन की राहें आसान नहीं होती, कई सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बाहर से सब कुछ वैभवशाली चमक दिखाई देती है, लेकिन वास्तविकता में परदेश का जीवन कई चुनौतियों से भरा होता है, जहाँ की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान और लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद झेलनी पड़ती है।

क्योंकि परदेश में रहकर हम कितना भी घर बना ले, तरक्की कर ले, ऐशो आराम का जीवन बिता ले, कहलाते तो हम परदेसी ही हैं। वहीं अपने परिवार से दूरी, अपनों से दूरी, मित्र परिचितों से दूर रहना सबसे कष्टकारी होता है। कई मांगलिक कार्यक्रमों, उत्सवों, त्योहारों, खुशी और गमों के मौके पर ना पहुंच पाने का दुख हृदय को पीड़ा दे जाता है। परदेश का अकेलापन और घर की याद व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर करती रहती है। लोग तो यही उलाहना देते हैं कि परदेश जाकर भूल गया, लेकिन सच मानिए हकीकत कुछ और होती है। दौड़ भाग की जिंदगी में वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। अगर वापस गए भी तो वहाँ सब कुछ बदला सा मिलता है।

परदेश में रोजगार और आर्थिक दबाव के तले जिंदगी पिसकर रह जाती है। किराए का घर, खर्च की अधिकता, नौकरी की अस्थिरता, वीजा संबंधी नियम और कानूनी प्रक्रियाएं तनाव बढ़ाती हैं। कई बार परदेश में योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र में समझौता भी करना पड़ता है। इससे आत्मसम्मान को ठेस भी पहुँचती है। समय लगता है, मित्र भी बनते हैं, मगर कहीं ना कहीं परदेश में अकेलापन लगता ही है। वैसे तो परदेश का जीवन व्यक्ति को आत्मनिर्भर, सहनशील और मजबूत बनाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि परदेश में दिक्कतें अवश्य आती है, पर वहीं जीवन का अनुभव भी बढ़ाती हैं और इंसान को निखारती हैं।

0: मिनट पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार, और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 30वें भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
3: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
2: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
4: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30

0: लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी

0: कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
1: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
2: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91 रुपये 58 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 59 पैसे और डीजल 94 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109 रुपये 70 पैसे और डीजल की 96 रुपये 7 पैसे दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 49 पैसे और डीजल की 96 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @SIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
2: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
4: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी

0: नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद आए बहुत

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
4: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
5: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
5: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है

0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो। इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर, जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार।

0: सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
0: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
1: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
0: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
1: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
1: ख्याल रखने वाला
0: जी।
1: है ना। विषय बता दें।
0: चलिए
1: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
0: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
1: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे।
0: आंखों से डर जाते थे।
1: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
0: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं।
1: है ना? सचमुच
0: जगमगाते हुए
1: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के

0: अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में।
1: जी, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
0: यानी
1: और
0: दिल
1: हम
0: को
1: उसको
0: कचोटते रहता है।
1: कचोटते रहता है और ऐसा लगता है, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना, ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, कहीं हम वो अटक के न रह जाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
0: अगर
1: कि
0: बताना चाहते
1: बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए, और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो भाई हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो जरूर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में गांव है रोपरखेड़ा वहां हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है और वे मुंबई चली आई। और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
2: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है
2: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा तब हमें इतनी ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
2: योग्यता
1: है उसकी भी जरूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून जोश जो आपका रहता है ना कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है मात्र शक्ति पता नहीं क्या है उसमें क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
2: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें

0: खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल। और देखो ना,
1: ये
0: जब
1: गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी, शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के मुंह से।
0: वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना? तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा, ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना।
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल। और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल।
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आंख का तारा कहते हैं, और हर माँ की आंख का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आंख का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात,
0: क्या
1: है?
0: बात है,
1: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकती हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख कर भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद
1: मिलती
0: कितनी
1: है,
0: मिलती है ना।
1: जी।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: तो
0: कहा।
1: जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो।
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई। हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: वैसे ही बने होते हैं। फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है, अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: अरे माँ तो
0: ऐसी
1: हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के
0: बिल्कुल।
1: कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और
1: कभी
0: जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम, जैसे कि पछतावा होने लगता है
1: और
0: या
1: अगर
0: यूं।
1: माँ ना हो इस दुनिया में, तब तो
0: हाँ
1: और भी बुरा लगता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछतावा हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानी या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े, और फिर देखिए ना अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति

0: कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और संदेश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
0: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
1: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना, तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: है। तारा होते ना बच्चे,
0: इसीलिए।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए, बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। मैं अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया।

0: बिल्कुल सही कहा।
1: ना?
0: और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है, एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त
1: पूरा
0: तरीके
1: लेखा
0: से
1: जोखा लिख दिया,
0: और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा
1: पूरा
0: लग रहा है
1: चित्र आ गया
0: हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं
1: ऐसे
0: सामने
1: ही।
0: लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: और अब
0: तो
1: गाना सुन ले।
0: चलिए।

0: लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती है, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा और हमें भी आपको एक गिफ्ट देना होगा।

0: तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली

0: अरे उसका निर्वहन तो होता ही है, स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक
1: बिल्कुल
0: साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट, मुझे तो याद नहीं हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में 2 बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया हम तो इतना कोशिश करते थे कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
1: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है परिणाम परीक्षा के बाद चलिए तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए हैं, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
0: एक गाना सुन के
1: चलो।

0: है।
1: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
2: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
1: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
2: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थाम कर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हां दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
2: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो, जबरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था, तो ऐसे गाती थी। और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहां से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
2: जी, जी।
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में
2: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयां आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
2: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना गाड़ियों की

0: कि उस जमाने में क्यों थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
0: और लता जी भी वहां थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए। और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
1: वाह वाह भाई, ऐसा
0: कहां
1: है
0: कहां से कहां ये बात देखिए।
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है। तो क्यों ना हम ये गाना,
0: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: जी हाँ, इतना पेशेंस थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
1: जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है।
1: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी। जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ। भई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो
1: जी
0: बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: तो
0: गाना
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाकया हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाकया सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडी जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है। तो कहती थे सब कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं, चलते मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार? और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल, कॉलेज स्टूडेंट, सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है। बड़ा मजा आया, लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
0: और आपकी ये दोस्ती
1: अभी भी कायम है?
0: अच्छा।
1: जी हाँ।
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती है।
1: जी।
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
1: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा।
1: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
0: लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी आपने सिर्फ एक लाइन

0: गुनगुनाइए। अच्छा,
1: हाँ
0: वैसे बहुत अच्छा लगा,
1: अच्छा लगा।
0: और बहुत देखिए ऐसा है कि
1: चलो
0: मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो
1: बहुत
0: कानों में
1: बहुत बहुत
0: रस
1: शुक्रिया।
0: हमेशा घोलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है, एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप इस बारे में क्या कहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीजों को उभार के ला सके। और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका
0: जी
1: मकसद पूरा होता
0: जी
1: है। और ये आना चाहिए, तभी
0: जी
1: जाके गाने की सफलता हो सकती है।
0: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती
1: अच्छा,
0: थी?
1: शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी।
0: जी
1: तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो। तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मूरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गजलों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है, तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए।
0: जी
1: तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी, वो
0: अच्छा
1: भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
0: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे,
1: पूछिए।
0: लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए। वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद, एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
1: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा, कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि ये कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना। हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
0: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम
1: जी
0: बात करें,
1: जी
0: मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में, आप ही क्या, सभी के मन में इस
1: सबके
0: किस्म
1: मन,
0: की
1: सबके
0: चीज
1: दिल
0: हुआ
1: में ये
0: करती
1: बात
0: थी।
1: होती है।
0: तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
1: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं
0: अच्छा,
1: जी।
0: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला, वो कौन सी थी?
1: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते हैं ना, टॉप पे रहा काफी दिनों
0: जी
1: तक। और यही नहीं, जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना, जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, स्टैफ्रिका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा

0: बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये
0: जी
1: गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता रहा है, तो
0: जी
1: आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि ये फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में रेडियो
0: थे,
1: पे सुनते थे।
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फूलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम, कहते हैं ना, रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका

0: ना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था, और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
1: पछतावा तो नहीं होता ना?
0: बिल्कुल नहीं,
1: तो
0: बिल्कुल नहीं।
1: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे
0: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
1: आप? अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं,
0: जी
1: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
0: जी मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं। और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध
1: वाह, तो कैसा काम चल रहा है ये वाला?
0: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
1: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा
0: हाँ
1: आपको?
0: आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना, वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारोट, जिन्होंने डॉन बनाई थी। और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे। और इसकी भी एक मजेदार कहानी है, जब
1: सुनाइए।
0: ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है। और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार
1: जी
0: शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे। और ये गाना अभी लोगों ने बहुत पसंद किया, सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी,
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी,
0: हैं, और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में, फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की, और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो आप, नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की, तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी इसी वजह से मैं जहां भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है, कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा

0: का एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई।
1: वाह
0: और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
1: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो बहुत
0: अच्छी
1: ही अच्छी
0: बात है
1: बात
0: ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं
1: है।
0: लाहौर गई तो वहां के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहां मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल भैरव जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे, और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे

0: प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे, तो हम इंदिवर जी को कहते थे आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीजें आपने लिखी जो छुपा के रखी है वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं।
1: मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
0: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गजलों को ज्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गजलें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गजल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलें थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
1: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
0: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरे भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफी साहब थे, मुकेश जी थे, और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे, मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे ये हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: कि आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की एक परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना

0: कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था। लेकिन एक था कि नहीं, इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
1: अच्छा।
0: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं। उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उनपे करा के वो गाने हम वहां पेश करते थे।
1: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं।
0: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
1: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
0: कोशिश
1: फिल्मों
0: तो
1: से,
0: रही है।
1: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
0: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
1: तो कैसे रिस्पांस रहता है लोगों का?
0: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहां पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहां आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे। आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
1: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
0: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहां रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहां तुम्हारी खुशी वहां मेरी खुशी।
1: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
0: जी,
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं। समझे ना। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
0: जी,
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग तहिती बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुद्र है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूंगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल है निगाहें नीची किए,

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं।
1: जी
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में,
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत
0: तो
1: खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार असलाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था। फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली मिली और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलूड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है,
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगी? कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हूँ?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए। जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे, वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है

0: कमल बारोड जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्युलॉइड किस्तारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिकराव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश
1: अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोधरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघीटी, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बोझा, मायापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक कुंदी कला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा, उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये पड़ौली, किशुनपुर, जमीरा, चकेरी, बासेन, परसा, सानीबर्रा, बरवाली, बरडांड, दातीढाप, घटगांव, कंडराजा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 122 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, अवरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भुइयां के बोली। आज इसमें आप सुनेंगे वार्ता, विषय है शिक्षा ले ही महिला सशक्तिकरण हो सकते। वार्ताकार हैं डॉक्टर रत्ना मिश्रा। काव्य पाठ सुनिएगा श्री मनोहर दास मानिकपुरी से। संपादन किया है मानस तिवारी ने और प्रस्तुति है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की।

0: भुइयां के बोली कार्यक्रम मा आप मन के स्वागत है। जहां कहूं भी लोकतंत्र है, शिक्षा ओखर मूल मंत्र है। नारी पढ़ी विकास ला गढ़ी। शिक्षा हर वो चाबी हवे जेखर ले विकास के ताला खोले जा सकत है। अही क्रम मा आवासुनी वार्ता जेखर विषय है शिक्षा ले ही महिला सशक्तिकरण हो सकत है। वार्ताकार हमें डॉक्टर रत्ना मिश्रा।
1: जम्मो श्रोता मल्ला राम राम। अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः। मातृमान पितृमानाचार्यवान पुरुषो वेदः। इस श्लोक के अर्थ ऐसा नाय कि जब तीन शिक्षक, पहली महतारी, दूसरैया ददा और तीसरैया गुरुजी, कोनो भी लैका मन ल मिलथे तभे मनखे या लैका मन ज्ञानी बनथे। यानी कि शास्त्र मा नारी ला महतारी मल्ला शिक्षक के रूप मा माने गए हवे। आजकल चारों डहर नारी सशक्तिकरण के अब्बड़ गोठपात हुआ थे। ता चलो पहली नारी सशक्तिकरण के शाब्दिक अर्थ ला जान लेथन। नारी के अर्थ ला बताना आवश्यक नहीं है और सशक्तिकरण के कुछ अर्थ नहीं है। काबर की सशक्तिकरण शब्द नो है प्रक्रियाए जौन मनखे मन के आत्मविश्वास बढ़ाते, अपन अधिकार के प्रयोग सिखाते और स्वतंत्र निर्णय लेहे के शक्ति देते। नर और नारी के काया के बनकला ए प्रकृति ह अलग अलग बनाए है। अलग अलग बनाए तो है, फिर दोनों के अपन अलग अलग महत्तम है। दोनों काया के विशेष गुण ह संसार के भलाई बर ही बने हैं। दोनों बिना संसार नहीं चलाए। दोनों मिलजुल के समभाव मा धरती माता के सेवा करते ता यही सरक बरोबर हो जाते। महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। ए बात कहाँ ले जन्मिस, काबर जन्मिस, कौन जनी, फिर महू ए बात ले सहमत तो हाँ होना भी चाहिए। अब प्रश्न ए है कि माई लोग मन सशक्त हो ही कैसे। ता ए बात ला जाने बर पहली इतिहास ढहर एक घव देखे बर पड़ी। बड़ भाग ले मोला उपकार प्रकाशन के एक किताब मिलीस, भारतवर्ष की चर्चित महिलाएं, लेखिका सुधा गोस्वामी जी। पुस्तक हा जानकारी के भंडारे जेमा वेद कालीन, प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल ले लेके आज तक के अब्बड़ झन महिला के गुण के बखान हवे। पढ़े के बाद अचंभा हुईस कि भारत मा नारी तो पहली चले सशक्त रहीस, तब फिर आज काबर फेर जन जन के गोट बात गली गली मा नारी सशक्तिकरण के जरूरत काबर पड़ीस, काबर बात हुआ थे। लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व यानी कि वैदिक काल में जब सनातन संस्कृति के देश विदेश में डंका बाजत रहीस, तब भारत के बेटी दुलौरीन मन शिक्षा के समान अधिकार प्राप्त रहीस। बेटी मन घलाव बरुआ करवा के वेद पुराण दर्शन शास्त्र पढ़े और ब्रह्मचर्य के पालन करत रहीन। जब आप मन ला वेद पढ़े के अवसर मिलही तब पता चलही कि वेद के कई ठन ऋचा ला तो पितुसी माता जी मन रचे हवे। वेद कालीन पूजनीय ऋषिका माई मन के नाम लेना चाहता हूँ। माता घोषा, रोमशा, विश्ववारा, अपाला, इंद्राणी, गार्गी, मैत्रेयी, जम्मू माई के पैया लागू वंदना करत हूँ। प्राचीन काल मा अध्यात्म के संगे संग बेटी दुलौरीन मन ला ललित कला, संगीत कला और तर्क शास्त्र जैसन विषय में तक पारंगत करे जात रही से। मानिहाओ अगर गोभिल गृह सूत्र ला त अशिक्षित पत्नी ला यज्ञ में संग बैठे के योग्य नहीं माने जात रही से। भारत की चर्चित महिलाएं पुस्तक में आदिकाल

ले आज तक के हजार ले ऊपर विदुषी मन के गुण के बखान है। सबके नाम ला नहीं ले सकूं, लेकिन पढ़े में एक बात समझ में आईस कि सबो जन में एक बात तो समान रहीस कि सबो जन पढ़े लिखे शिक्षित विदुषी और ज्ञानी रहिन। अत्येक बात होए के बाद ओ प्रश्न हाँ फिर आगु में आके ठाड़ हो गए है कि महिला सशक्तिकरण के बाद आखिर आइस कहाँ ले। काल चक्र के गति हाँ नहीं बदले, तब होले रात और दिन होते और ऋतु परिवर्तन घलो होते है न जी। ऐसा है ए सोन चिरैया के वैभव और संस्कृति के अतका प्रभाव रही कि विदेशी आक्रांता मन आईन और अपन अपन ले देश के नाश करे के उद्यम करी। देश के नाश करे बर हमर भारत के माई बेटी बहनी मन ऊपर उनकर अत्याचार के प्रभाव के रूप में बाल विवाह, बालिका हत्या, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा जैसा नवा कुप्रथा के जन्म हुई। केवल ए नवा कुप्रथा के जन्म नहीं हुई बल्कि सती प्रथा जैसे पुराना कुप्रथा का बढ़ावा घलो मिलिस। उत्तर वैदिक काल तक पहुँचत पहुँचत तो अत्यक परिवर्तन हुई कि कुप्रथा में जकड़गी।

0: प्रथा जैसा नवा कुप्रथा के जन्म हुई। केवल ए नवा कुप्रथा के जन्म नहीं हुई बल्कि सती प्रथा जैसे पुराना कुप्रथा का बढ़ावा घलो मिली। उत्तर वैदिक काल तक पहुंचत पहुंचत तो अत्यक परिवर्तन हुई कि कुप्रथा म जकड़ गिन। सबले बड़े नुकसान तो यही हुई कि जौन देश म देवी उपासना होते शिक्षा बर सरस्वती के वही देश म बेटी अब शिक्षा ले दुरिहा होगी और सदा सदा बर पराधीन होगी। जौन भारत भूमि म मंडन मिश्र जी के धर्म पत्नी उभय भारती जैसन महान माता जी हर आदि शंकराचार्य जैसन महान विभूति संग शास्त्रार्थ करके उ मतलब पर काया प्रवेश करे बर बाध्य कर दी वही देश माँ अब बेटी माई के दशा दीनहीन बन के रहेगी। जैसे कि मैं पहली कह रहे हूँ कि काल चक्र नहीं रुके फिर समय बदलीस एक घाव फिर भारत के अलग अलग जगह में शिक्षा के अलग जगाए बर बेटी माई मन संघर्ष करिन और ऐसे चमकिन जैसे आकाश में तरैया ओहू सबले चमकदार। भारत के पहली महिला चिकित्सक बनी सानंदी बाई गोपाल राव जोशी, पहली न्यायाधीश बनी न्यायमूर्ति अन्ना चांडी, पहली महिला शिक्षक बनी सावित्री बाई फूले, पहली महिला पायलट बनी सरला जी ठकराल, पहली महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू जी, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, पहली महिला राष्ट्रपति बनी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी, पहली आईएएस बनी अन्ना राजम मल्होत्रा जी, पहली आईपीएस किरण बेदी जी, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और जाने कतेक नाम है एक ले बढ़ के एक आज हर क्षेत्र में अपन पहचान बना डाले हमें सब सशक्त महिलाएं। पहली मैं बता चुके हूँ कि सशक्तिकरण शब्द नो है प्रक्रिया है और जेकर उद्देश्य महिला का आर्थिक रूप से सक्षम अर्थात आत्मनिर्भर बनाना, आत्मनिर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना, आत्मविश्वास पैदा करना, मनोबल बढ़ाना, स्वयं के क्षमता के पहचान करना है। जतेक भी बेटी माई जीवन में सफल हुईन उनका सफल होए के कारण में एक ठन समानता है और वो हरे शिक्षा। सशक्तिकरण असन शिक्षा घलो है पढ़े और पढ़ाए के क्रियाए पढ़े पढ़ाए माँ ज्ञान और विद्या दोनों के प्राप्ति होते। विद्या परम दैवतम यानी विद्यालय कोनो बड़े देवी देवता नहीं हुए। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं हुए कि पुस्तक ल पढ़े सक जावाओ चार अखर लिखे सक जावाओ बस। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास चरित्र निर्माण और सशक्तिकरण के प्रभावी माध्यम है। बड़े बड़े महापुरुष मन ला शिक्षा ला सकारात्मक बदलाव उज्जवल भविष्य के आधार माने हमें। बाबा साहब के कहना है कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो उन पीही ओ दहाड़ी सब बात के एक बात। नारी सशक्त तभे हो ही जब शिक्षा प्राप्त करी। संस्कृत के एक सूक्ति घलो यही कही थे विद्या ददाति विनयम यानी विद्या या ज्ञान विनम्रता सिखाते, विनयादयाति पात्रत्वम औ विनम्रता ले मनुष्य योग्य बन जाते, पात्रत्वात् धनमाप्नोति योग्य व्यक्ति ही धनार्जन करे बर समर्थ होते और धनात् धर्मः धन ले धर्म कर्म और परोपकार के कार्य होते अततः सुखम अतेखर पाछू अंत में सुख के प्राप्ति होते। कई घाव ऐसे होते कि बेटी कुछ ऐसे कामला कर देते कि घर बाहर में सब जन ओला कहे लगते यही हमर बेटा है। हो सकत है ऐसे कही के ओला सशक्त करे के प्रयास हुई लेकिन एक बिनती है बेटी ला सशक्त करे बर बेटा कहे के ओला बेटा माने के जरूरत नहीं है। बेटी ला बेटी रहन देवाओ बेटा और बेटी के पालन बरोबर करके ओला सशक्त बनावाओ यही मोर आप मन से सब जन से बिनती है। अब यही विषय में एक छोटकन कविता सुनाना चाहूँ कि देख तो सुग्घर नोनी जन्मे है किसान के घर माँ जैसे सुग्घर फूल फूले है कोनो फुलवारी माँ कोनो कई थे लक्ष्मी आगिस कोनो रे मुड़ पिरवा अव वो खरदाई ददा मन बैठिन धर के मुड़ला सोचिन के अब कैसे चलही ये जिंदगी के चरखा पाल पोस और पढ़ा लिखा तब फिर बिहाव के खर्चा ठौके गाँव में बाबू आईस खिसियाईस अब फिर समझाइस झन करते संसो किसान ए बेटी तोर सरस्वती समान बेटा बरता है झन गुन बेटी के तय कर सम्मान ओही पढ़ी ओही लिखी ओही कमाही बड़ धन धान अपन घर ला भरबे करही और घर घर में पहुँचाही ज्ञान फिर एक गोठ लगुन ले भाई रखबे तय बेटी के ध्यान फिर एक गोठ लसुन ले भाई रखबे तय बेटी के ध्यान ओला तय बेटा झन कहिबे तब्भे बनही ओ इंसान तब्भे बनही ओ इंसान। आप सबो झन ला धन्यवाद।
1: अही क्रम मा आवा सुनी श्री मनोहर दास मानिकपुरी ले काव्य पाठ।
2: देखबे एक दिन तोर मेहनत रंग लाही देखबे एक दिन तोर मेहनत रंग लाही पट पर भाठा मा बोए धान लहलहाही रे देखबे एक दिन तोर मेहनत।

ले अमरैया जुड़ छावू मां जुड़ाले चढ़त बेरा घाम जीव तिल मिलाही अंगरा के आँच जैसे देहु मां जनाही चढ़त बेरा घाम जीव तिल मिलाही अंगरा के आँच जैसे देहु मां जनाही।

काले अमरैया जुड़ छाऊ माँ जुड़ाले चिरै चिरगुन गरुआ खोजत है ठिकाना बैठत

रुखवा तरी उन कर जुरियाना। चिरई चुरगुन गरुआ खोजा थे ठिकाना, बैठ रुखवा तरी उन कर जुरियाना।

मुछाओं थिरा ले अमरैया जुड़ छाऊ माँ जुड़ा ले अमरैया जुड़ छाऊ माँ जुड़ा ले नदिया कछार खीरा ककड़ी कलिंदर रस कुशियार लीची आम फर चुकंदर नदिया कछार खीरा ककड़ी कलिंदर रस कुशियार लीची आम फर चुकंदर दही मही करसी पानी पी ठंडा ले दही मही करसी पानी पी ठंडा ले अमरैया जुड़ छाऊ माँ जुड़ा ले अमरैया जुड़ छाऊ माँ जुड़ा ले घम बेरा है छैहा माँ छैहा ले घम बेरा है छैहा माँ छैहा ले अमरैया जुड़ छाऊ माँ जुड़ा ले अमरैया जुड़ छाऊ माँ जुड़ा ले अमरैया जुड़ छाऊ माँ जुड़ा ले आओ मोर तीसर कविता जिंदगी तोर नाव जिंदगी तोर नाम लिखा ले जिंदगी तोर नाम लिखा ले माया हृदया माया दे जाना

हृदयमा घर ते बना ले माया हृदया माया दे जाना जिंदगी तोर नाम लिखा ले माया हृदया माया दे जाना माया हो गे कथे मोला का यही हमाया सुरता माँ तोरे लगते सोरे लावत गुया है।

गठजोड़ भावर तैं घुमा ले, गठजोड़ भावर तैं घुमा ले, माया रुदया माया दे जाना, जिंदगी तोर नाम लिखा ले, जिंदगी

हृदयमा घर ते बना ले माया हृदया माया दे जाना जिनगी।

0: दे जाना।
1: ये कार्यक्रम के संपादन करीन मानस तिवारी और प्रस्तुति रहीस डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के और एकरे संग आज के भुइया के बोली कार्यक्रम इहे सिरात है। आगू के कार्यक्रम मा एक नवा विषय लेके हम फेर आबो। अब देवा अनुमति मानस भाईला जय जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे भुइयां के बोली। इस कार्यक्रम में आपने सुना वार्ता, विषय था शिक्षा ले ही महिला सशक्तिकरण हो सकते। वार्ताकार थी डॉक्टर रत्ना मिश्रा। काव्य पाठ आपने सुना श्री मनोहर दास मानिकपुरी से। संपादन किया था मानस तिवारी ने और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की थी। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे 10:30 से 11 तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग, और 11:30 तक का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 310026। फोन नंबर आप एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा फोन नंबर है 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 21 मई 2026 और 22 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी

0: में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जयमाला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 5:35 होने वाले हैं, आइए शामिल होते हैं बहनों के कार्यक्रम महिला सभा में।

महिला सभा कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को मंजू कोरी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, वो कहावत तो हम सब ने बचपन से ही सुनी है ना, कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, है ना सखियों? ये हमारे पेरेंट्स हमको बचपन में कितना बोला करते थे। लेकिन सखियों, ये कहावत तो सत्य नहीं है ना, क्योंकि खेल मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्राचीन काल से ही खेलों को केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का माध्यम माना गया है। खेल हमें स्वस्थ रहने, अनुशासित बनने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और टीम भावना के साथ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन खेलों का महत्व केवल जीत और हार तक ही सीमित नहीं होता है बहनों, बल्कि खेलों की सबसे बड़ी पहचान उनकी खेल भावना, ईमानदारी, नियमों के पालन और प्रतिद्वंद्वी के प्रति सम्मान में

छिपी होती है। बहनों, जब कोई खिलाड़ी बिना किसी छल कपट के पूरे समर्पण और निष्पक्षता के साथ खेल खेलता है, तभी खेल का असली उद्देश्य पूरा होता है। इसी भावना को बढ़ावा देने और दुनिया भर के लोगों को निष्पक्ष खेल के महत्व से परिचित कराने के लिए विश्व फेयर प्ले डे मनाया जाता है। सखियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है सही तरीके से खेलना और उसके नैतिक मूल्यों का पालन करना, और इसके लिए ही विश्व फेयर प्ले डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ही विश्व में खेलों की निष्पक्षता, ईमानदारी, सम्मान और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना होता है। मैनू, फेयर प्ले का अर्थ ही है खेल के नियमों का पालन करते हुए बिना किसी धोखाधड़ी, पक्षपात या अनुचित साधनों का प्रयोग किए खेलना। फेयर प्ले केवल नियमों का पालन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अपने विरोधी खिलाड़ी का सम्मान करना, निर्णय किए गए फैसलों को भी स्वीकार करना, टीम के साथ सहयोग करना और हार जीत को समान भावना से स्वीकार करना भी प्रमुख रूप से शामिल है, और यही गुण एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान बनाते हैं। इसी दिन का उद्देश्य खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल संगठनों और दर्शकों को ये संदेश देना है कि खेल का वास्तविक आनंद और सम्मान तभी है जब उसे पूरी निष्पक्षता और खेल भावना के साथ खेला जाए, और अगर ऐसा ना हो तो खेल केवल प्रतियोगिता ही बनकर रह जाते हैं। फेयर प्ले खेलों की आत्मा है। ये सिखाता है कि सफलता पाने के लिए सही रास्ता अपनाना आवश्यक है। ये खिलाड़ियों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पैदा करता है। मैनू, जब कोई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के बल पर जीत हासिल करता है तो वो जीत उसे अधिक गर्व, प्रसन्नता और संतोष से भर देती है। सखियों, फेयर प्ले केवल बड़े खिलाड़ियों के लिए ही नहीं है, बल्कि छात्रों, छात्राओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से बच्चों को अनुशासन, ईमानदारी और टीम वर्क का महत्व समझाया जाता है। अगर बच्चे बचपन से ही निष्पक्षता और नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं तो वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। फेयर प्ले उन्हें ये भी सिखाता है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मेहनत, धैर्य और सही मार्ग अपनाना बहुत ही आवश्यक है। हर जगह ईमानदारी, नियमों का पालन और दूसरों के प्रति सम्मान ही स्वयं की सफलता की कुंजी है। अंत में सखियों, हम कह सकते हैं कि विश्व फेयर डे हमें ये महत्वपूर्ण संदेश देता है कि जीत और सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी, निष्पक्षता और नैतिकता। खेलों का असली सौंदर्य भी तभी ही दिखाई देता है जब खिलाड़ी नियमों का सम्मान करते हुए उसे पूरी भावना के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और हम सभी को भी केवल खेलों में ही नहीं बल्कि अपने जीवन के हर क्षेत्र में भी फेयर प्ले की भावना अपनानी चाहिए। यही भावना हमें एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक भी बनाती है। और फिलहाल तो सखियों, भाई हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो है कि आपके मनोरंजन का ध्यान रखते हुए आपको एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। आप भी इंतजार कर ही रहे होंगी, है ना सखियों? तो चलिए, बिना देरी के हम आपको सुनाते हैं आपकी कसम फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: सखियों, जैसे कि आज हम सभी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, तो जहां इसके एक और अनेकों फायदे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ नुकसान, कुछ खतरे भी हैं ही। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज की वार्ता है। वार्ता का विषय है डिजिटल दुनिया के छिपे खतरे, और वार्ताकार हैं श्रीमती उषा भांगे जी। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता। दर्पण हर्बल ब्यूटी क्लिनिक, हमारे यहाँ स्पा, मेहंदी, दुल्हन मेकअप, फेशियल, मुहासे, झुर्रियों का संपूर्ण ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारा पता है दर्पण हर्बल ब्यूटी क्लिनिक, राजेंद्र नगर, बिलासपुर। मोबाइल नंबर है 7000124161। सखियो, जैसे कि हम जानते हैं कि आज है माह का तीसरा मंगलवार, और आज का हमारा क्रम है परिसंवाद का, और हमारे बीच है श्रीमती उषा भांगे जी। तो सखियो, सबसे पहले हम उषा जी का स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में और अपने कार्यक्रम में। उषा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, मैं उषा जी बोल रही हूँ, और आज के डिजिटल

0: दुनिया से छिपे खतरों के बारे में आपको बताऊंगी।
1: जी हाँ सखियो, जैसे कि हम जानते ही हैं कि आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाओं ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। सखियो, आज हम घर बैठे बैंकिंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत जुड़ भी सकते हैं। लेकिन इस चमकती डिजिटल दुनिया के पीछे कई ऐसे छिपे खतरे भी मौजूद हैं जो हमारी सुरक्षा, निजता, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। डिजिटल तकनीक ने जितनी सुविधाएं दी हैं उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और सबसे बड़ा खतरा है साइबर अपराध। और आजकल ऑनलाइन ठगी, फर्जी वेबसाइट, नकली कॉल, ईमेल फ्रॉड और हैकिंग जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं हमारी बहन उषा भांगे जी से। तो उषा जी, हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया का आज के जीवन में क्या महत्व है और इसका असली मतलब क्या है?
0: हाँ मंजू जी, मैं अपनी सखियों को आज बताना चाहती हूँ कि डिजिटल दुनिया का अर्थ उस आधुनिक तकनीकी वातावरण से है जिसने हमारे पूरे जीवन को इंटरनेट और स्मार्टफोन के इर्द गिर्द समेट कर रख दिया है। इसमें बैंकिंग, शिक्षा और मनोरंजन जैसी सेवाओं को हमारी उंगलियों पर लाकर जीवन को पहले से कहीं अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक बना दिया है।
1: तो उषा जी, हम जानना ये भी चाहते हैं कि डिजिटल दुनिया के छिपे खतरे कौन कौन से हैं?
0: हाँ मंजू जी, ये तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। इस तकनीकी सुविधाओं के साथ साथ कई गंभीर चुनौतियां भी आई है। सबसे पहले खतरों में साइबर अपराध, निजी डेटा की चोरी, ऑनलाइन ठगी, फर्जी खबरों का प्रसार और डिजिटल लत शामिल है जो हमारी सुरक्षा, निजता और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं।
1: और ये साइबर अपराध आखिर होता क्या है?
0: साइबर अपराध का मतलब ये होता मंजू जी, इंटरनेट का उपयोग करके की गई आपराधिक गतिविधियां, आपराधी लोगों की बैंक डिटेल्स, निजी जानकारी या धन चुराने के लिए हैकिंग और फिशिंग जैसे हथकड़े अपनाते हैं। जानकारी की कमी के कारण आम लोग अक्सर इसका शिकार होकर भारी आर्थिक नुकसान उठाते हैं और इस नुकसान का भरपाई भी उन्हें करना पड़ता है।
1: तो ऑनलाइन ठगी या धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए?
0: मंजू जी, मैं अपनी सखियों को बताना चाहूंगी, सबसे बुनियादी नियम यह है कि अपना OTP, पासवर्ड या बैंक संबंधी जानकारी कभी किसी से भी साझा न करें। संदिग्ध लिंक और अनजान कॉल से हमें बचना चाहिए। अगर किसी का भी आपके मोबाइल पे कॉल आता है तो उसे आप तो या तो कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए या कॉल मत उठाइए। हमेशा केवल आधिकारिक और सुरक्षित वेबसाइट का ही उपयोग करें और साइबर सुरक्षा के नियमों के प्रति आप हमेशा सतर्क रहें।
1: तो उषा जी, ये डिजिटल दुनिया में डेटा चोरी किस तरह से होती है?
0: डेटा चोरी हमें आपको मंजू जी बताना चाहूंगी, आज हम सोशल मीडिया और विभिन्न एप्स पर हम अपनी हर जानकारी साझा करते हैं। कई बार असुरक्षित एप्स हमारे लोकेशन, निजी बातचीत या हम किसी से जैसे बात करते हैं और पसंद नापसंद का डेटा चुरा लेते हैं। इस डेटा का उपयोग विज्ञापन, धोखाधड़ी या अन्य गलत उद्देश्यों के लिए किया जाता है। व्यक्तिगत लाइफ उसको अंदर तक रखे, दूसरों से आप शेयर ना करें। इस तरह से हम अपने डेटा की चोरी को बचा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो उषा जी ये भी जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो फर्जी खबरें होती हैं समाज के लिए ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं?
0: हाँ मंजू जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, फर्जी खबरें और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल जाती है जिससे हमारे समाज में भ्रम, तनाव और डर का माहौल बन जाता है। लोग बिना सत्यापन की जानकारी शेयर कर देते हैं जिससे कई बार हिंसा तक की स्थिति पैदा होती है। इसलिए किसी भी सूचना को शेयर करने से पहले उसे जांचना और परखना बहुत ही जरूरी है।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और ये आजकल बच्चों और युवाओं में डिजिटल दुनिया का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए।
0: बिल्कुल मंजू जी, घंटों मोबाइल स्क्रीन पर गेमिंग खेलना, सोशल मीडिया और वीडियो देखने की आदत, ये एक बहुत ही हमारे समाज के लिए गंभीर समस्या बन गई है जिसे आजकल ज्यादा तौर पे आप देखेंगे बच्चे और युवा इसमें बिल्कुल मतलब घंटों बिता देते हैं। उन्हें अपने ना परिवार की चिंता रहती है, ना अपने खुद की चिंता रहती है। वे इससे क्या होता है, मानसिक तनाव, चिंता, अस्वाद और उनकी नींद की कमी होती है।

0: होती है। साथ में ये भी देखा जाता है कि शारीरिक समस्याओं को जन्म देती है और कई बीमारियां भी इससे होती है, और बच्चे भी पढ़ाई व उत्पादकता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता है, उन्हें लगता हमें मोबाइल मिल जाए और हम उसमें गेम खेलते रहे।
1: तो ये आदतें बच्चों और युवाओं के ही नहीं बल्कि घर में जितने भी सदस्य हैं लगभग वो सभी आजकल मोबाइल से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: चार लोग बैठे हैं लेकिन वो आपस में बात करने की जगह चारों अपने मोबाइल पे ही व्यस्त रहते हैं, है ना। तो इसका भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है और देखा गया है कि इस तरह से इनके बीच में दूरियां भी आ रही हैं, है ना उषा जी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या तो, परिवार से भी दूरियां हो जाती है, समाज से भी दूरियां होती है, दोस्त जो रहते हैं वो भी उनसे कन्नी काट लेते हैं।
1: तो उषा जी हम जानना ये भी चाहेंगे कि ये साइबर बुलिंग आखिर क्या है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं।
0: साइबर बुलिंग, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बताना चाहूंगी। इंटरनेट पर बच्चों का ऑनलाइन शोषण या उन्हें अपमानित करना साइबर बुलिंग कहलाता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: कई बार बच्चे अनजाने में गलत वेबसाइट या गेम्स के संपर्क में आ जाते हैं जिससे उनके मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में शिक्षित करना माता पिता और मैं सोचती हूँ स्कूल के शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होती है कि उन्हें बताना किस तरह से इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए।
1: तो क्या ये डिजिटल तकनीक है जो ये गंभीर समस्या भी पैदा कर सकती है?
0: हाँ बिल्कुल, गंभीर समस्या हो सकता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। असल बच्चों की सबसे ज्यादा क्या, पहले क्या बच्चे जाके बाहर खेलते थे, पर आजकल क्या वो बच्चे दिन भर मोबाइल में बैठे रहते हैं और कभी कभी आंखों की रोशनी पे भी उसका गलत इफेक्ट होता है, कान में भी सुनाई कम देने लगता है, तो ये सब उसी का ही मतलब परिणाम है।
1: परिणाम हो रहा है।
0: हमें अपनी हर गतिविधि जैसे कि घर का पता या यात्रा की जानकारी, हम कहीं भी जा रहे हैं यात्रा में, सार्वजनिक रूप से हमें कभी भी दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए। अपनी निजता सेटिंग को मजबूत रखे और केवल विश्वसनीय लोग ही अपने प्रोफाइल तक पहुंच दे ताकि कोई अपराधी आपको निगरानी न कर सके।
1: सुरक्षित इंटरनेट अनुभव के लिए तकनीकी सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय हमें अपनाने चाहिए?
0: ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी। हमें हमेशा मजबूत और कठिन पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अपने अकाउंट्स के लिए दो स्तरीय टू स्टेप वेरिफिकेशन अपनाना बहुत ही जरूरी है। यह आपकी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है।
1: अच्छा,
0: कभी भी हमें मतलब अनजान व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए अपना पासवर्ड।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं तो वो इसका दुरुपयोग कर सकते
0: दुरुपयोग
1: हैं। हाँ, तो बच्चों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग कैसे सिखाया जा सकता है उषा जी, इसके बारे में भी हमारी बहनों को कुछ बताइए ताकि वे भी अपने बच्चों को इसकी जानकारी दे सके।
0: सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि उनकी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग और ऑनलाइन खतरों के बारे में शिक्षित करें। बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों पर प्यार से नजर रखें और उन्हें डांटे फटकारे नहीं, क्योंकि डांटने फटकारने से बच्चे भी थोड़ा सा मतलब वो हो जाते हैं, तो उनको प्यार से आप समझाइए तो बच्चे समझ जाएंगे। और उन्हें सिखाए कि डिजिटल दुनिया एक साधन है न कि आपका पूरा जीवन है, तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ऑनलाइन खतरों के बारे में शिक्षित करना पेरेंट्स को बहुत ही जरूरी है। और मैं ये भी चाहती हूँ कि टीचर्स जो रहते स्कूल में पढ़ाई तो करवाते हैं बच्चों से, लेकिन पढ़ाई के साथ उन्हें थोड़ा सा मतलब
1: इसकी भी जानकारी दे। तो क्या उषा जी डिजिटल दुनिया सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करती है?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तकनीकी में हमें ऑनलाइन तो जोड़ा है लेकिन वास्तविक जीवन के संबंध को कम कर दिया है। परिवार में लोग एक साथ बैठकर भी फोन में व्यस्त रहते हैं जिससे आमने सामने की बातचीत घट रही है और आपसी भावात्मक जुड़ाव कमजोर होता जा रहा। लोग अपने फोन में बिजी रहते हैं, मतलब जैसे उनके घर के बड़े रहते उनसे बात करते वो उन बातों पे उन्हें ध्यान ही नहीं रहता क्योंकि वो तो अपने
1: सही कहा
0: मोबाइल पे ही बिजी रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनको ये नहीं पता रहता कि घर में हमारी यहाँ क्या बात हो रही है, कोई दुख की सूचना है या कोई खुशी का माहौल है। बाद में जब उन्हें बताते बोले अरे मैं तो सुना ही नहीं, क्यों आपने सुना क्यों नहीं, क्योंकि आप तो अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हो।
1: तो उषा जी हम इन सब के बीच में ये भी जानना चाहते हैं कि इन सब में सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए आपकी नजरिए से?
0: ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मंजू जी। सरकार को साइबर सुरक्षा कानून मजबूत करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और साइबर अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे लगता हमारे यहाँ भी बहुत ये साइबर सुरक्षा का काम चल रहा है, साइबर अपराधियों पर भी हमारे जो पुलिस की टीम है

0: वो भी पूरी निगरानी में है। हमारे जो पुलिस के अधिकारी है उनसे हमें काफी मदद मिलती है। उसके कारण जो साइबर अपराधी है वो काफी मात्रा में मुझे लगता है कि पहले से मतलब कम हो गई है।
1: अच्छा जी।
0: और सरकार को भी चाहिए कि साइबर सुरक्षा कानून मजबूत करने के लिए, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए और ज्यादा काम करना चाहिए,
1: व्यवस्था करनी चाहिए
0: उसका।
1: तो उषा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अत्यधिक डिजिटल निर्भरता हमारे काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित करती है?
0: हाँ मंजू जी, हमारा जो ध्यान रहता है उसको बिल्कुल कभी कभी क्या करती है, भटका देती है, जिसमें क्या होता है हमारी कार्य क्षमता और उत्पादकता कम हो जाती है। जब हम हर समय सूचनाओं के बोझ तले दबे रहते हैं तो रचनात्मक सोच और वास्तविक कार्यों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है, है ना?
1: तो बिल्कुल। तो अब अंतिम प्रश्न आपके सामने रखते हैं उषा जी, कि डिजिटल खतरों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है?
0: हाँ मंजू जी, इसका सबसे अच्छा उपाय है जागरूकता, सावधानी और संतुलित उपयोग। तकनीक का लाभ तभी सार्थक होता है जब हम सजग और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बने। डिजिटल शिक्षा और सुरक्षा उपायों को अपनाना ही हमें इन अदृश्य खतरों से सुरक्षित रख सकता है।
1: तो सखियों, डिजिटल दुनिया आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके छिपे खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुरक्षित, संतुलित और जागरूक डिजिटल उपयोग से ही हम इन खतरों से बच सकते हैं। तो उषा जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो तक आई, हमारी सखियों से इतनी अच्छी बातें की, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ, मैं चाहूंगी आप लोग जो ये प्रोग्राम सुनेंगे रेडियो पे, मतलब सुन के, एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिए, उसको अपनाइए और सबसे ज्यादा अपने घर में युवा और बच्चों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी दीजिए और उन्हें प्यार से समझाइए। हर काम प्यार से होता है, न कि गुस्से से। धन्यवाद।
1: दर्पण हर्बल ब्यूटी क्लिनिक, हमारे यहाँ स्पा, मेहंदी, दुल्हन मेकअप, फेशियल, मुहासे, झुर्रियों का संपूर्ण ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारा पता है दर्पण हर्बल ब्यूटी क्लिनिक, राजेंद्र नगर, बिलासपुर। मोबाइल नंबर है 7000124161। डिजिटल दुनिया के छिपे खतरे, इस महत्वपूर्ण विषय पर अभी आप और हम एक वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थी श्रीमती उषा भंगे। हमें उम्मीद है सखियों ये वार्ता आपको रोचक लगी होगी, साथ ही उपयोगी भी लगी होगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
3: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
1: मधुमक्खी पालन मीठा व्यवसाय, आइए सखियों अब इस विषय पर रुक्मणी पांडे जी से कुछ जानकारियां सुनते हैं।
4: दीदी को जय भी हम, मैं रुक्मणी पांडे, ग्राम सिवनी, ब्लॉक बलौदा, जिला जांजगीर चांपा से बात कर रही हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने। सरकार भी गरीबी और बेरोजगारी निवारण के लिए कितनी भी योजनाएं चला रही है, हर वार्षिक बजट में योजनाएं जोड़ी और घटाई जाती। गरीबी और बेरोजगारी निवारण के लिए अधिकांश सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें भी महिलाएं आर्थिक स्वावलंबी बनने के लिए भी अपना खुद का निजी व्यवसाय कर रही हैं। जैसे कई ग्रामीण लघु उद्योग, जैसे आपका अचार, पापड़, बड़ी, बिजौरी बना के, और जैसे कपड़ा उद्योग है बुनकरी का, हमारे क्षेत्र में बहुत आया पे किया जा रहा है। लेकिन मैं कुछ हद से अलग से काम करना चाह रही थी, तो मैंने मीठा व्यवसाय के बारे में सुना। तो मधुमक्खी पालन छत्तीसगढ़ में धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कम लागत ज्यादा मुनाफा वाला आय मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर से जाकर वहाँ पता की और वहाँ मैं प्रशिक्षण प्राप्त की, और रांची से मधुमक्खी पालन के विषय में 15 दिन का वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त की। मुझे काफी अच्छा लगा, मैं इसको व्यवसाय के रूप में इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं इसमें कार्य करना प्रारंभ की। मेरे यहाँ छोटा मिनी किचन गार्डन बना के रखी थी, उसमें मैं कुछ फूल वगैरह लगाई थी और उसमें मधुमक्खी पालन स्टार्ट की, शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद में मुझे जब मधुमक्खियाँ काफी अच्छा रिजल्ट देना शुरू की, फूल वगैरह से दिला के करके अपना मधुमक्खी का, मुझे काफी अच्छा व्यवसाय से लाभ प्राप्त हुआ। तो इस विषय पे मैं कहना चाहूंगी मेरी दीदी बहनों को कि वे भी अपना छोटा व्यवसाय शुरू करके इसको आगे बढ़ा सकती है, इसमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मधुमक्खी पालन करने से हमें कम जगह पे ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते। एक डिब्बे का सेटअप जो आराम से 4000 से 5000 रुपए में एक बॉक्स रहता है, इसमें एक डिब्बे में हम 30 से 40 के

0: 12,000 रुपया से 20,000 रुपया तक के प्राप्त कर सकते हैं। और जो पालन करना है हमें, तो इसके लिए हमें सरकारी तरफ से बहुत ही मदद मिलती है, जैसे NDB है, KVIC है, उद्यान विभाग से हम लोग शिक्षा प्राप्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जो मधुमक्खी पालन शुरुआत करेंगे उसमें सब्सिडी भी मिलती है। और ट्रेनिंग लेने के लिए जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है रायपुर है, कृषि विज्ञान केंद्र जांजगीर चांपा में 7 दिन की ट्रेनिंग फ्री में होता है। वहाँ रहना खाना सब फ्री है, अच्छी जानकारी मिलती है, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और जैसे हमने मधुमक्खी के लिए चुनाव, सबसे क्या है, कोई जिस चीज को हम कर रहे हैं उसमें अच्छी गुणवत्ता चीज अच्छी होती है। जैसे इसमें मधुमक्खी का हमें अच्छी क्वालिटी की मधुमक्खी जो हमें शांत स्वभाव ज्यादा शहद दे सके, ऐसे मधुमक्खी का प्रयोग करना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा मधुमक्खी इटालियन मधुमक्खी, इसका स्वभाव शांत स्वभाव रहता है, ज्यादा शहद देता है, लोगों के बीच में यह मित्रवत रहती है। मधुमक्खी का तो हमने चुनाव कर लिया, मगर हम मधुमक्खी के लिए जगह भी चुनाव के लिए छोटा जगह में हो सकता है। उसके बाद मधुमक्खी का जगह चुनने के बाद में जहाँ पे फूलों की उपलब्धता ज्यादा हो, जैसे महुआ है, सरसों है, सूरजमुखी, लीची, आम के बगीचे के पास हम डिब्बों को रख सकते हैं, तो इसे आसानी से मधुमक्खी अपना जाके अपना भोजन ला सकती है, अपना कर सकती है, बना सकती है, पालन कर सकती है। और अभी के समय में बिना खर्च का ही है, आराम से 300 से 600 रुपए किलो मार्केट में लोकल ब्रांड में हम बेच सकते हैं। और उसमें मोम 400 से 500 किलो मोम प्राप्त होता है, जिससे मोमबत्ती है, क्रीम में रॉयल जेली है जो 8,000 से 12,000 रुपए किलो, दवाई बनाने में काम आता है। तो यानी कि साल भर में सालाना कमाई 1 से 2 लाख के से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मधुमक्खी का जैसे नवंबर से फरवरी सरसों के सीजन में सबसे ज्यादा शहद मिलता है इसमें। और हम लोग इसको कहाँ बेच सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। तो जैसे लोकल हाट है, बाजार है, मेला है। और अगर हम लोग को आज के समय में आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे बेचा जा सकता है उसमें। यह मीठा व्यवसाय कम मेहनत में बहुत ही लाभदायक है और बहुत आमदनी देने वाला है। और सभी बहनों को मैं आग्रह करना चाहूंगी कि वे भी मधुमक्खी पालन को शुरुआत करें। छत्तीसगढ़ में नया है लेकिन बहुत अच्छी आमदनी देने का स्रोत है ये। सिर्फ बस इतना चाहिए कि छोटी सी जगह में, एक छोटे से बॉक्स में उनकी शुरुआत होना है। आप पहले छोटा सा बॉक्स शुरुआत कीजिए, उसके बाद जैसे बढ़ते जाएगा आप अपने बॉक्स की संख्या बढ़ा दीजिए। और मैं सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और जय जोहार बहनों।
1: मधुमक्खी पालन मीठा व्यवसाय, इस विषय पर अभी हम रुकमणी पांडे जी से कुछ जानकारियां सुन रहे थे। हमें उम्मीद है सखियों ये जानकारियां आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ ही बहनों अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो अगली बार होगी आपके साथ जल्दी ही दोबारा मुलाकात। इस वादे के साथ दीजिए अब अपनी रेडियो सखी मंजू कोरी को अनुमति। आप सभी को हमारा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।

महिला सभा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:05 होने वाले हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। पहले सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। हम आपको याद दिला दें श्रोताओं की 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 6:20 का समय होगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का, और इसका शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे 6:45 पर। ग्राम सभा में बेरा की गोट के तहत आज विषय होगा पशुओं का टीकाकरण। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं 7:20 पर। 7:30 का समय होगा किसान वाणी का। इसमें आज की बात के तहत विषय होगा एकीकृत कृषि में डेयरी प्रबंधन। आज स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में, ग्राम तेलसरा विकास खंड बिल्हा, जिला बिलासपुर, कृषकों के मध्य ध्वनियांकन की

किया गया कार्यक्रम सुनिएगा। संयोजन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। संपादन और रिकॉर्डिंग किया है महंगू भैया ने। रात 8 बजे सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। गायक कलाकार होंगे अभिजीत सावन। कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण समय होगा 8:15 पर। श्रोताओं, अब एक नज़र कल यानी कि बुधवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल 6:30 पर सुबह खेती की बात के तहत विषय होगा गर्मी में पशुधन की सुरक्षा। फ्लैगशिप कार्यक्रम नवविहान में कल विषय होगा अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय है कल सुबह 6:45 पर। कार्यक्रम अमराई में गायक कलाकार होंगे उपासना ओगरे, विज्ञान निधि ओगरे, रामायण वस्त्रकार अनुपमा मिश्रा और साथी। ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 8:30 पर। फोन इन पर आधारित कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद सुनिएगा कल सुबह 10 बजे। कल शाम 5:05 पर समन्वय साहित्यिक परिवार छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा आयोजित डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा प्रसंग की रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुनवाएंगे। प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। रिकॉर्डिंग एवं सहयोग है महावीर बरगाह का। ग्राम सभा में बेरा के गोट के तहत विषय होगा परागण और उत्पादन वृद्धि। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा कल शाम 7:20 पर। कल रात 8 बजे सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आप सुनेंगे भूपेन हजारिका को। 5:35 पर युवा जगत का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आज की बात के तहत विषय होगा विश्व मधुमक्खी दिवस, क्रम में होगा युवा पसंद और सवाल जवाब। कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण समय होता है 8:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शाम के 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग ललित साहू के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में राज्य के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जाए। तेल कंपनी डहाल ले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करे गए है। और अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में हवा गरेर के संग थोर बहुत वर्षा होने के संभावना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जाही। आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया ले गोट बात कर श्री शाह कहन कि सरकार के लक्ष्य है कि बछर 2031 तक बस्तर के लोगन मन के आमदनी है 6 गुना तक बढ़ जाही। ओमन कहन कि बस्तर ला नक्सल मुक्त बनाए के बाद केंद्र और राज्य सरकार है मिलके अवैया 5 साल भर एखर विकास ले जुड़े एक ठन वैज्ञानिक रोड मैप तैयार करे है जेखर ले बस्तर संभाग में बनाए गए सुरक्षा बल के करीबन 200 शिविर मल्ले 70 ठन कैंप मल्ला शहीद वीर गुंडा

दूर सेवा डेरा में बदले जाही। ए सेवा डेरा के माध्यम ले स्थानीय लोगन मन ला शासन के जम्मो योजना मन के फायदा पहुंचाए जाही, जेमा बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण, स्कूल, आंगनबाड़ी, वन उपज प्रसंस्करण शामिल है। एकर अलावा बस्तर के हर आदिवासी परिवार ला एक एक ठन गाय और भैंस दे जाही और अवैया 6 महीना के भीतर यह सहकारी डेयरी के एक ठन बहुत बड़े नेटवर्क तैयार करे जाही। ए काम पर छत्तीसगढ़ सरकार ह राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के संग अनुबंध

0: के एक ठन बहुत बड़े नेटवर्क तैयार करे जाही। ए काम बर छत्तीसगढ़ सरकार ह राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड के संग अनुबंध कर ले हे। केंद्रीय गृह मंत्री यहू गिन की सरकार ह बस्तर के लोगन मन के सुरक्षा के संगे संग ओखर विकास बर घलो प्रयास करही। श्री शाह कहिन की हिंसा ह कोनो भी समस्या के समाधान नहीं है और हिंसा ले आज तक काखरो विकास नहीं हो है। ओमन कहिन की अवैया 5 साल के दौरान केंद्र और राज्य सरकार ह मिलके बस्तर के लोगन मन तक सरकार के जम्मो सुविधा पहुंचाही और यह दुनिया में विकास के एक ठन लोकतांत्रिक मॉडल बनही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जगदलपुर में रखे गए मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठक की अगुवाई करें। ये बैठक में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संगे संग केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और ये चारों राज्य के पुलिस महानिदेशक के अलावा पुलिस और प्रशासन के बड़का अधिकारी मन शामिल हुई। तेल कंपनी डहर ले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करे गए है। तेल कंपनी के छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान हा आकाशवाणी समाचार ला बतेन कि पेट्रोल के कीमत में 90 पैसा और डीजल के कीमत में 96 पैसा प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे गए है। राज्य सरकार है कहने की प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के कोनो कमी नहीं है, एखर ले लोगन मन ला घबराए के कोनो बात नहीं है। सरकार के मुताबिक राज्य में अभी 3,88,00,000 लीटर ले ज्यादा पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर ले ज्यादा डीजल हवे। खाद्य विभाग डहर ले जम्मो तेल कंपनी मन के संग समीक्षा बैठक रखे गिस। ए दौरान कहिन की जौन जौन पेट्रोल पंप में स्टॉक कमती है वहां प्राथमिकता के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के आपूर्ति करे जाए। प्रदेश में कुल 2,516 पेट्रोल पंप हवे। पाछू कुछ दिन में मांग बढ़े के सेती पेट्रोल के खरीदी में 47% और डीजल के खरीदी में 22% के बढ़ोतरी दर्ज करे गए है। सरकार है लोगन मन ले अपील करे है कि कोनो भी प्रकार के अफवाह में मत आवे और ज्यादा पेट्रोल ला स्टॉक में झर रखे। राजधानी रायपुर के लोक भवन में हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सिक्किम और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस के कार्यक्रम पारंपरिक उत्साह और उमंग के संग मनाया गिस। राज्यपाल रमेन डेकाला एक कार्यक्रम के माई पहुना बनाए गए रहीस। लोक भवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के रखे गए कार्यक्रम में राज्य के प्रतिनिधि मन घलो शामिल होइन। राज्यपाल है ए जम्मू के राज्य के लोगन मल्ला बधाई और शुभकामना दिन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ला आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। प्रदेश में जनजाति समुदाय मन तक सरकारी योजना मल्ला बताए खातिर काली ले जन भागीदारी सबले दूर सबले पहले अभियान शुरू करे गए है। जनजाति गरिमा उत्सव के तहत ये अभियान ला 25 मई तक चलाया जाए। अभियान के तहत जनजाति क्षेत्र मन में ज्यादा ले ज्यादा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। ये दौरान सेवा केंद्र मन में जन सुनवाई कार्यक्रम रख के शिकायत मन के समाधान करे जाए। प्रदेश में PM जन मन योजना और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चुने गए करीबन 8,000 गाँव, 7,000 ले ज्यादा सेवा केंद्र मन के माध्यम ले ये अभियान ला चलाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय है सार्वजनिक स्थान मन ले पकड़े गए लावारिस कुकुर मल्ला टीकाकरण या नसबंदी करे के बाद वापिस नहीं छोड़े के अपन पूर्व निर्देश ला वापस ले में इनकार कर दिन। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के अध्यक्षता वाले पीठ नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन करे के मांग वाला याचिका ला खारिज कर दिन और अधिकारी मल्ला ऐसा कुकुर मल्ला आश्रय जगह में रखे के निर्देश दिन। पीठ चेतावनी दे है कि निर्देश मन के पालन नहीं करैया अधिकारी मल्ला अवमानना और अनुशासनात्मक के सामना करे बर पड़ सकत है। दुर्ग पुलिस के टीम डहर ले IPL मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप चलिया गिरोह के 13 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करेगी। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार के प्रमुख संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस एप।

0: के माध्यम ले म्यूल अकाउंट के उपयोग करके करोड़ों रुपया के लेन देन करत रहीस। पुलिस आरोपी मंत्री ले मिले म्यूल खाता के करीबन 5 करोड़ रुपया के लेन देन के जानकारी मिले है। दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर इलाका में हो एक ठन चोरी के मामला के जांच करत पुलिस अंतरराज्यीय गिरोह को खुलासा करे है। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल है बतैन कि ये मामला में मेरठ ले दू झीन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे गए है। ओखर तिल्ले 60 लाख रुपया के कीमत के करीबन 400 ग्राम सोना और 3.5 लाख रुपया नकदी बरामद करे गए है। ये गिरोह दुर्ग भिलाई नवा रायपुर बिलासपुर और जबलपुर में चोरी करत रहीन। श्री अग्रवाल है बतैन कि आरोपी मन हा दिन में फेरी वाले बन के कपड़ा और कंबल बेचे के बहाना रेकी करे। बिलासपुर जिला में पुलिस और ACCU के टीम हा सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजा के संग 8 झीन माइलोगिन मल्ला गिरफ्तार करीन। ये माइलोगिन मन हा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो गाड़ी ले गांजा के तस्करी करत रहीन। ये जम्मो झन माइलोगिन मन हा मटियारी गांव के रवैया रहे और ओमन उड़ीसा ले गांजा ला के तीर तखार के इलाका में बेचत रहीस। पुलिस के टीम हा गांजा के संग 2 ठन इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ला घलो जब्ती कर ले है। एकर कीमत ला 46,75,000 रुपया बताए जाते। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग डहल ले आज प्रदेश के रायपुर दुर्ग बालोद राजनांदगांव बलौदाबाजार जांजगीर चांपा रायगढ़ और बिलासपुर के संगे संग कोनो कोनो जिला मन में हवा गरेर और हल्का बारिश होए के संभावना जता है। ओती बस्तर संभाग के जिला मन में गरज चमक के संग छीटपुट वर्षा होए के और गाज गिरे के चेतावनी दे गए है। और अब थोर कुन समाचार सार में। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम हा उत्तर मध्यमा पहली बछर और 11वीं के दूसरिया मुख्य परीक्षा के समय सारणी ला जारी कर दे है। ये परीक्षा 1 जून ले 9 जून तक रखे जाही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में दाखिला खातिर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थी मन हा 20 जून तक अपन अर्जी दे सकत है। चयन परीक्षा ला 26 जुलाई के मंझनिया 12 बजे ले 2 बजे तक राखे जाही। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव डहर ले काली 20 मई के बिहनिया 10 बजे ले अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेला के कार्यक्रम रखे जाही। कांकेर जिला के भानु प्रतापपुर और आज बिहनिया रेलवे पटरी पार करत रेलगाड़ी के चपेट में आए एक जन रिटायर शिक्षक के मौत हो गए। और जांजगीर चांपा जिला के खटोला गांव में कार और फटफटी के आपस में टकराए ले एक जिन जवान लड़का के मौत हो गए, उन्हें 3 जन जवान घायल हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहने की अवैया 5 साल में राज्य के बस्तर संभाग है देश के सबले विकसित आदिवासी संभाग बन जही। तेल कंपनी डाले पेट्रोल और डीजल के कीमत में आज फिर एक घाव बढ़ोतरी करेगी है। और अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कोनो कोनो जगह में हवा गरेर के संग थोर बहुत वर्षा हो के संभावना है। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:20 हुए हैं। पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनें।

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लूटमार। अमित खन्ना ने इस गीत को लिखा है और राजेश रोशन का संगीत। इस गीत के लिए हमें इन श्रोता साथियों के ईमेल आए हैं। बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी, साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा, हनुमान बोखड़े, माफ़ कीजिएगा हनुमान बोड़खे। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। लखनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां। टोरोवाल

नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रीतम थांदी, वामिका और वाणी थांदी। पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत, चेतन भगत। बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय नमन अपार। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी, अन्नपूर्णा वर्मा। कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। हिसार से आप हैं राजकुमार प्रमोद, पुष्पेंद्र सिंह। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। पानीपत से आपने इसी गीत को पसंद किया है नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा। मुरादाबाद ग्राम दुल्हारपुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। बुलंदशहर से आप हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाह नवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी। धुर्रा भाटा, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग। आप हैं मंडी डबवाली से, संबलपुर कांकेर से फागुरम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। इसी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है हांसी से राजू मिंगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता मिंगलानी, सुभाष योगी का। रायगढ़ से आप हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र, जोई यामिनी और उमा तिवारी। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला तराना।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम बैराग, आनंद बख्शी की रचना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इस गाने के लिए हमें इन श्रोता साथियों के ईमेल प्राप्त हुए हैं। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार, पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल और भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से आप हैं धर्मेंद्र, छिम्पा, कपिल और पूजा, इंदौर मध्य प्रदेश से आप हैं नारायण, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमार, कुमारी देवी चौधरी और मालती चौधरी, भाटापारा से आप हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज, नारायण यदु, भुवन कामरी,

रसेड़ा से आप हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू। नरवेल महाराष्ट्र से आप हैं पी एस नहावकर, निर्मला और विशाल। पंजाब से सुभाष, गोदारा, बिमला, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। इसी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है नरगोड़ा से कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि, शीतल, राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेनू, रजनी और प्रियंका देवांगन। डूंगर गांव से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सौंगा मगर लोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयंश कुमार चंदन। पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा चंदन, प्रांजल चंदन। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा चंदन। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं बैराग फिल्म का ये तराना।

जोधपुर राजस्थान से आप हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्व हिमांश, पांडर कवड़ा से अनिल उषा, अनुश्री धनश्री, पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन, अभिजोत, जिला कोरबा से आप हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र गजेंद्र, जयंती ममता, मनीषा मंजू मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह सहोदरीबाई, मनमोहन सिंह गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य, मेघा मस्कीन, जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, बिहार सीतामढ़ी से आप हैं मुसर्रत जहानाज, तलअत फरहत, रिफअत नुजहत, साजिया शाहीनाज और नाजिया नूरी नाज, चिरमिरी कुरासिया कालरी से आप हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, तेलंगाना से आप हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, श्रीगंगानगर राजस्थान से आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी। इसी गीत के लिए हमें ईमेल मिला है पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता का। मुजफ्फरपुर बिहार से आप हैं आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से आप हैं दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, महाराष्ट्र से रूपेश, महेश, प्रगेश, प्रीतेश, यवतमाल से राहुल, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, मनवर, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, महाराष्ट्र से आप हैं लक्ष्मण राव, कल्पना ताई, प्रतीक्षा, स्वप्निल, महाराष्ट्र से ही आप हैं बसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकार, नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत और कृष्टि पटवा। आप सभी ने पसंद किया है अधिकार फिल्म का ये तराना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ें, आरडी बर्मन का संगीत है और रमेश पंत ने इस गीत को लिखा है।

अधिकार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में रमेश पंत ने गीत की रचना की थी, आरडी बर्मन का संगीत। और इसी के साथ ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका शेष भाग आप सुनिएगा शाम 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, 6:45 होने वाले हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तू अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य

0: पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बस्तर संभाग के लोगों तक सभी शासकीय सुविधाएं पहुंचाकर उनकी औसत आमदनी में 6 गुना की वृद्धि की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल के मूल्य में 96 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। और रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बन जाएगा। आज बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी 6 गुना तक बढ़ जाए।
7: मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं।
8: नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक टाइट लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है।
6: श्री शाह ने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 वर्षों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत बस्तर संभाग में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 शिविरों में से 70 कैंपों को शहीद वीर गुंडाधूर सेवा डेरा में बदला जाएगा। इस सेवा डेरा के माध्यम से स्थानीय लोगों को शासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा, जिसमें बैंकिंग, कौशल प्रशिक्षण, स्कूल, आंगनबाड़ी और वनोपज प्रसंस्करण शामिल हैं। इसके साथ ही बस्तर के हर आदिवासी परिवार को एक एक गाय भैंस दी जाएगी और अगले 6 माह के दौरान यहां सहकारी डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB के साथ अनुबंध कर लिया है।
7: मैं इतना सुनिश्चित करना चाहता हूं कि बस्तर का हर नागरिक की अभी जो एवरेज आय है उसको कम से कम हम 5 साल में 6 गुना करने का काम करेंगे, इसमें कोई संशय रखने की जरूरत नहीं।
8: नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक टाइट लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की

0: यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है।
1: इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने आज जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ ही केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक और इन चारों राज्यों के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज फिर से बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों के छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समन्वयक नितिन चौहान ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल की कीमत में 96 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस तरह से रायपुर में अब पेट्रोल 104 रुपये 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल 97 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर की दर से मिलेगा। इस बीच राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 3,28,00,000 लीटर से अधिक पेट्रोल और 7,75,00,000 लीटर से ज्यादा डीजल उपलब्ध है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक भंडारण न करें। कोंडागांव पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर इसके 7 सदस्यों को दिल्ली और गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। फरसगांव के एसडीओ पुलिस अभिनव उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस की अलग अलग टीमें पिछले करीब 3 महीने से तलाश कर रही थीं। उन्होंने बताया कि आरोपी खुद को बीमा एजेंट बताकर लोगों से पैसा वसूल किया करते थे और अलग अलग मोबाइल फोन से फर्जी मैसेज भेजकर उनके साथ ठगी किया करते थे। दुर्ग पुलिस ने आईपीएल मैचों के दौरान ऑनलाइन सट्टा ऐप संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन सट्टा कारोबार का मुख्य संचालक सेट स्पोर्ट बुक और लोटस ऐप के जरिए म्यूल अकाउंट का उपयोग कर करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास मिले म्यूल खातों से करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेश डेका ने कल लोकभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित किया। इनमें शुभांगी आप्टे, संजय आप्टे, सुजॉय मंडल, रुचि साहू, तुमन साहू, कुसुमलता बीपरे और पुलिस अधिकारी सूरज सिंह परिहार शामिल हैं। दुर्ग भिलाई के नेहरू नगर इलाके में हुई एक चोरी के मामले की जांच करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि इस मामले में मेरठ से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
2: नेहरू नगर में विगत दिनों चोरी हुई, चोरी के उपरांत पुलिस टीम लगातार उस पर लगी हुई थी। एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया था। उस अंततः 2 आरोपी मेरठ से पकड़े गए हैं और वहां से लगभग 400 ग्राम सोना रिकवर हुआ है जो गली हुई अवस्था में था और साथ ही लगभग 3.5 लाख कैश मिला है। ट्रांजिट रिमांड टीम को लाया गया है और इनसे इंटरोगेशन करने हेतु PR लिया जाएगा।
1: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह ने दुर्ग भिलाई, नवा रायपुर, बिलासपुर और जबलपुर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। ये आरोपी दिन के समय फेरी वाले बनकर कपड़ा और कंबल बेचने के बहाने रेकी किया करते थे। बिलासपुर जिले में पुलिस और ACCO की टीम ने सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 90 किलो गांजा के साथ 8 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं इलेक्ट्रिक ऑटो से गांजे की तस्करी कर रही थीं। ये सभी महिलाएं भटियारी गांव की रहने वाली हैं और ओडिशा से गांजा लाकर आसपास के इलाकों में खपाने की तैयारी में थीं। पुलिस ने गांजे के साथ 2 इलेक्ट्रिक ऑटो भी जब्त किए हैं जिनकी कुल कीमत 46,75,000 रुपये आंकी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के रायपुर, बालोद, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बिलासपुर सहित कुछ जिलों में तेज हवा चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बस्तर संभाग के जिलों में हल्की वर्षा और मेघ गर्जन के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इस बीच आज शाम दुर्ग जिले में मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई इलाकों से आकाशीय बिजली गिरने की भी खबर मिली है। आंधी के कारण अनेक स्थानों पर पेड़ गिर गए हैं जिससे बिजली और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस नहीं छोड़ने के अपने पूर्व के निर्देशों को वापस लेने से इनकार किया है। राजधानी रायपुर स्थित लोकभवन में कल हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सिक्किम और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस का कार्यक्रम पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल रमेश डेका इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम ने उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष 11वीं की द्वितीय मुख्य परीक्षा की समय सारणी

0: जारी कर दी है। ये परीक्षा 1 जून से 9 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थी 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चयन परीक्षा 26 जुलाई को दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव द्वारा कल 20 मई को सुबह 10 बजे से अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में आज सुबह रेलवे पटरी पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हो गई। जांजगीर जिले के खटोला गांव में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। और कोरबा जिले के बालको थाना क्षेत्र में बीती शाम हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 7 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बस्तर संभाग के लोगों तक सभी शासकीय सुविधाएं पहुंचाकर उनकी औसत आमदनी में 6 गुना की वृद्धि की जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और डीजल के मूल्य में 96 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी। और रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर सहित प्रदेश के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा।
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने को हैं। लीजिए सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग।

मनोकामना इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं। स्वर और संगीत है बप्पी लहरी का, इंदिवर के शब्द। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं रायपुर से नीलू वंदना बिट्टू कुमार, यवतमाल से जयराम दिशांत अर्पिता, राजकोट से जूली जगदीश प्राची और प्रवीण, तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा मीरा देवी विशाल मानस गंगा देवी विश्वकर्मा, महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद, राजस्थान से आप हैं रामकुमार चंद्रकला, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार नरगिस खातून, गुमला झारखंड से आप हैं एस एम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा राघव भानु प्रिया माधुरी और किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीता रजत मंजू भाटिया और मयंक भाटिया, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से आप हैं इंद्रभान सिंह, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा गुरप्रीत सिंह लवप्रीत करमजीत कौर, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश प्रिंस एकांश और सुमित, पटियाला पंजाब से आप हैं सोमदत्त कैराव ज्योति रानी गुरमंत कौर मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजी पर्ल विलिस, तिलहारा से आप हैं प्रकाश नर्मदा सुजाता, कांकेर जिला भानबेड़ा मुंगवाल से भारत राम पटोडी जयंती हेमंत उमंग मोक्ष सुधाकर राजे जाधव प्रश

शांत राजे जाधव संचित वायाल प्रथमेश देशमुख प्रणाली सर्वद और सानवी देशमुख आप सभी हैं कालेगांव जफराबाद से। दिल्ली से अजीम वकार माहिरा अजीम और नगमा अजीम। गंडई टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक जयश्री देवांगन ऋषभ ऋचा देवांगन। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा सिंह ऋषभ सिंह। गांधीबाग अकोला से आप हैं रमेश वैशाली और धनंजय। दिल्ली से सोनम सना और आबिदा। दुर्ग से आप हैं करुणा मीना अश्विनी और विपुल। जालंधर से आपने इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है रोशन जहां मन्नत जहां इशरत जहां। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन अखिलेश लोकेश आशीष देवांगन रवि शनि रियांश कान्हा आदित्य देवांगन। बुड़गहन से आप हैं रामदुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकीरत राहुल गुरशब्द सिंह राहुल।

0: Akashvani at 90. ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
2: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 310026। हमारा फ़ोन नंबर है 310026। फ़ोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 21 मई 2026 और 22 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम

ईमेल करें, गीत सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से चेन्नई एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत। आइए, हम आप तक पहुंचा रहे हैं सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ों में, शब्द अमिताभ भट्टाचार्य के, विशाल शेखर का संगीत। और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं पंजाब से पिंकी लवली, आरती मिंटू, नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, बलिया से आप हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी रॉय, दतरेंगी, भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद

दत्रेंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोण, मोहम्मद शाबाद खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, ज़िला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श सार्थक अलौकिक, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन कोमल, परी कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यवतमाल पंजाब से राम टेके, यशोधरा श्राव्या टेके, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती काजल पूर्वी, हेजल राजेश रेशमा साहू, मुंबई से आप हैं अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश मुकेश कुमार साहू, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी प्रेम, पूजा दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा आराध्या साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, श्रीरामपुर से अशोक सविता अनिकेत ऋषिकेश जीविका, राजकोट से जूली जगदीश, गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक स्वाति, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, भिलाई से आप हैं अशोक प्रमिला आसमा, लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, कवर्धा से अशोक कुमार साहू, खुशांत साहू, निशांत साहू, लीलेश्वरी और लालिमा, झारखंड से अनजान साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज और चाहत, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, आप सभी हैं पलारी से, लूतरा खमरिया से अक्रम अमीन अर्श अतिका, बालौद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, बागबहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा कौशल सेन, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली भाई परवीन, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन और माही सेन। आप सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हुए हैं, आइए शामिल होते हैं ग्राम सभा में।

ग्राम सभा सुनैया जम्मू श्रोता संगवारी भाई बहनी मल्ला गौरी बहनी के राम राम जय जोहार। संगी हो घाम हत कहो कहिया तब बहुते जना थावै भारी गर्मी परत है। ऐसन मा अपन चेत रखना हावै है ना भाई, अपन तो रखना छे संगी हो हाँ, हमन अपन स्वास्थ्य के चेत रखे बर का जतन नहीं करन है ना भाई। जैसे हमला घाम माना जाना है तो चश्मा पहिरथन टोपी पहिनथन गमछा ला बांधथन है ना भाई, तो हम अपन व्यवस्था तो करथन। फिर हमर किसान भाई हमर जेन भी पशुपालक है उमन ला हम कहबो भाई कि जैसे अपन हम चेत रखबो वैसने गाय गरुआ जेन भी जीव जंतु हम पालथन ओकर रक्षा सुरक्षा ओकर चेत करना ओकर स्वास्थ्य के जुम्मा हमर जिम्मेदारी होते भाई बहनी हुआ। तो किसान भाई मन पशुधन है तेकर रक्षा सुरक्षा बर सबले ओकर देख रेख स्वास्थ्य खान पान पर तो करबेच करही, और सबले जरूरी चीज आए टीकाकरण। उनकर स्वास्थ्य के रक्षा सुरक्षा बर सबले महत्वपूर्ण होते टीकाकरण है संगी हो। टीकाकरण काबर भाई, तो जेन भी खतरनाक बीमारी है उकर बचाव होते और संगे संग मृत्यु दर है पशु मन के कम होते संगवारी होवा, और उत्पादन क्षमता है दूध है कोनो जानवर से हमला मांस मिला थे तो वो है बाढ़ते। तो भाई बहनी हुआ पशु धन बर टीकाकरण हा बहुते जरूरी है। देखा जैसे महतारी मन लइका मन के टीकाकरण कराते वैसने पशुधन जिन पालक है तेला टीकाकरण कराना जरूरी है संगी हुआ। टीकाकरण ले का होते भाई बहनी हुआ संक्रामक जिन रोग है ओला ओकर से सुरक्षा मिलते।

0: जिन बीमारी है बगर थे ओकर से बचाव होते। तो हमर संगी मल हम यही कहबो कि टीकाकरण पशु मन में जरूर करावा, काबर के विशेषज्ञ मन जानकार मन के मन बताते भाई कि पशुधन में ज्यादातर बीमारी कहूँ कहिया तो खुरपका मुहपका रोग के बहुत होते जेन हा बगर थे एक पशु ले दूसर पशु मा, तो एकर टीकाकरण करवावा संगी होवा। ऐसा एक दू ठन रोग औ है जेन हा होते, अभी देखा एदे गर्म के दिन बाद बरसात आही, तेमा हम सुने हन और जानत घलो खन संगी हो, विशेषज्ञ मन बताते गला घोटू के रोग है, एहा एदे पानी गिरही तहले पशुधन मा बगरना शुरू हो जाती, ए रोग शुरू होते तो एक पशु ले दूसर पशु मा बगरे लगते। तो टीकाकरण संगी हो हमार कहे के मतलब यही है कि जेन भी हमार घर में गाय बछरू बैला भैंसा है ओकर टीकाकरण जरूर करावा। भाई बहनी हो, टीकाकरण कराए ले किसान भाई मल्ला बहुते फायदा होते, एक तो आर्थिक लाभ, बीमारी ले जेन होए वाले खर्चा है इलाज है तेकर बचाव होते, दूसर नियमित टीकाकरण करा ले पशु ह सुरक्षित रहते, और बढ़िया पशुधन ले कई ठन ऐसे बीमारी है जेन पशुधन गाय गरुआ से मन के ऊपर आते, तो संगी होवा ये सब ले बचाव बर टीकाकरण बहुते जरूरी है। देखा गोट बात तो करबो, फिर पहली ये संदेशाला सुन लेथन।
1: दर्पण हर्बल ब्यूटी क्लिनिक, हमारे यहाँ स्पा, मेहंदी, दुल्हन मेकअप, फेशियल, मुहासे, झुर्रियों का संपूर्ण ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारा पता है दर्पण हर्बल ब्यूटी क्लिनिक, राजेंद्र नगर, बिलासपुर। मोबाइल नंबर है 7000124161।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दर्पण हर्बल ब्यूटी क्लिनिक, हमारे यहाँ स्पा, मेहंदी, दुल्हन मेकअप, फेशियल, मुहासे, झुर्रियों का संपूर्ण ट्रीटमेंट किया जाता है। हमारा पता है दर्पण हर्बल ब्यूटी क्लिनिक, राजेंद्र नगर, बिलासपुर। मोबाइल नंबर है 7000124161।
2: तो किसान भाई बहनी हुआ, टीकाकरण ले आप मल्ला लाभ हो ही, कई ठन योजना चलते जिन पशुपालक मल्ला ये योजना के लाभ मिलते। तो संगवारी हुआ, आप मन टीकाकरण करे बर अपन पशु धन ला बिल्कुल झन भुलावा, एपमा आप मन के लाभ है, आर्थिक स्थिति सुधरते, गाय गरुआ के टीकाकरण से उमन स्वस्थ रहते, उत्पादन बढ़ते। तो देखा कतका एमा लाभ है, ज्यादा ले ज्यादा लाभ है और सुरक्षित है, तो जरूर आप टीकाकरण करावा। देखा ये तो टीकाकरण के बात हो गए और संगे संग आप मल्ला एक ठन सूचना बता देथन। हर गुरुवार और शुक्रवार के संझा 7:30 ले फोन इन कार्यक्रम में आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते। एमा किसान भाई मन कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य ले संबंधी समस्या के समाधान पाए बर विशेषज्ञ मन ले फोन में सवाल पूछते और समाधान पाते। इही कड़ी में गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 के स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रही। इकर संग बिहनिया 10:30 ले 11 तक के पूछे के जिन सवाल है, विषय है, ओला बता देथन। ये विषय में आप मन सवाल कर सकत हो, नील हरित काई औ हरी खाद के उपयोग। विषय सुन लो संगी होवा, नील हरित काई और हरी खाद के उपयोग और जिन दूसरिया विषय रही जेकर बेरा ए 11:30 एकर विषय रही प्राकृतिक खेती के महत्व। प्राकृतिक खेती के महत्व ये विषय ले संबंधित जिन भी समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए बर हमर फोन नंबर है 2665592। फोन लगाए के पहली एसटीडी कोड लगाएल पड़ी, एसटीडी कोड हावे 07752, एला जरूर लगा है संगवा।

हुआ एक कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 21 मई 2026 और 22 मई 2026 शाम 7:30 ले 8 बजे तक आप मन सुन सकत हो। ये तो हो गए हमार सूचना। अब आवा सब गोट बात करे हन ता एक ठन सुघर कस गीत सुन लेथन जे लगा थे बैतालम साहू और ओकर संगी।

संगी होआ किसान वाणी सुनैया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला गौरी बहनी मैं स्वागत करत हूँ। राम राम जय जोहर। संगी हो आप मन से गोड बात करथन तो सुग्घर सुग्घर जानकारी ला रही थन, विशेषज्ञ मन के गोड बात ला रही थन और हमन घेरी बेरी के थन के खेती किसानी के बूता संग कुछ न कुछ धंधा व्यवसाय करा जेकर से आप मतलब दू पैसा के हाथ में रहे आमदनी हो। तो देखा संगी हुआ खेती किसानी को बूतम कही हा तो डेरी खेती के संगे संग डेरी के काम दूध दही के काम बहुत बढ़िया और सुघर रही थे। कई हमर किसान संगवारी मन करते घलो और कई जन जिसे नहीं कर थे और कहूँ पशु कर में रहे अभी हम टीकाकरण के गोड बात करे हैं और पशु है तो जरूर करना चाहिए संगी हो एमा करे ले एमा नहीं तो ओमा फायदा जरूर मिलते। एकीकृत खेती में डेयरी प्रबंधन लगो कहिया एकर मतलब यही आए कि खेती के बूतक संग में पशुपालन करा मछली पालन करा ये काम ला कहो जोड़ के करा था तो आप ला एक दूसर के सहयोग सहायता मिली और एमा कहो सबले बढ़िया काम करिया तो डेयरी के काम है बढ़िया है दूध उत्पादन के काम है बहुत बढ़िया होते संगी हुआ। यह रोज के आए कहा डेयरी में रोज आप मतलब दो पैसा चार पैसा आही फसल उत्पादन के अलावा आप मन दूध के आय ले खेती के संग एला जोड़ सकत हो। देखा अगर खेती के संग में कहो

0: डेरी करा था तो आप ला कतका फायदा है, जैविक खातु मिलही, आपके खाए बर दूध दही मिलही, चे आप बेच के 2 पैसा कमा सकत हो, और बायोगैस गोबर ले आपला ईंधन के बचत होही, परिवार के मनखेला रोजगार मिलही, तो कतका सुघर काम आए ना, ये काम ला आपला करना चाहिए संगी हो। डेयरी प्रबंधन पर कुछ बात के आपला ध्यान देल पर ही विशेषज्ञ मन जेन मनखे करते तेन मन गोट बात करते भाई कि डेयरी उत्पादन करिया तो बढ़िया सुघर नस्ल के गाय लेवा जेकर दूध उत्पादन बढ़िया हुआ है, ओकर रख रखाव ओकर कोठा बढ़िया रहा है, साफ सुथरा रहा है ना, समय समय में टीकाकरण हुआ है जेकर से उनकर खान पान अच्छा रही, रख रखाव अच्छा रही, संतुलित आहार देहा, स्वस्थ रही, प्रजनन प्रबंधन सब बढ़िया रही, तो आपके 4 पैसा के आमदनी हो ही संगी हुआ। तो हम तो यही कहबो अपन किसान भाई बहनी मल्ला कि डेयरी खेती के संग डेयरी जरूर करा है ना भाई, जेकर से आपके हाथ में 2 पैसा रहा है। तो देखा आप मन तो जरूर करिया खेती के संग में दूध उत्पादन, और हम आज के भेंट वार्ता में आप मन बर लाए हन सुघर बढ़िया, आज मंगलवार है और आप मन जाना था भाई किसानवाड़ी गांव में। तो देखा आज किसानवाड़ी गांव में स्थल रिकॉर्डिंग है एकर आधारित कार्यक्रम है किसानवाड़ी गांव में, ग्राम तेलसरा विकास खंड बिल्हा और जिला बिलासपुर के, संयोजन प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के, और संपादन और रिकॉर्डिंग हमर सहयोगी मंगू भाई के। तो चला कैसे सुघर मंगू भाई है गोट बात करे तेला सुना थन।
1: प्रस्तुत हवाई स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसानवाड़ी गांव में,
2: विकसित कृषि संकल्प अभियान एकर तहत ग्राम पंचायत तेलसरा विकास खंड बिल्हा के ग्राम पंचायत में ये कार्यक्रम आयोजन करी गई, जिसमें सब किसान और कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारी मन वहाँ शिविर में आयोजन में उपस्थित रही। सबले पहले हमारे भेंट हो गए शकुंतला बंजारे जी मन सन भेंट करें जो हमें ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। सबले पहली बता है कि आपके जो ये जो अभियान चला था वह एक उद्देश्य क्या है?
3: ये क्या है, किसानों को जो भी कृषि विभाग का योजना है ना उसके बारे में जानकारी दिया जा रहा है।
2: कौन कौन से ऐसी योजना चलत हुए जेकर बारे में अपन बताता हूँ हमारे किसान भाई मल्ला।
3: ये जैसा अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना जो चल रहा है उसको जो किसानों को 6,000 मिलता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जिन किसानों का एग्री स्टेक में पंजीयन हो चुका है उन किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
2: एकर अलावा कौन कौन से और योजना चलत हुए जेकर जानकारी आप मन देते हो ये अभियान में?
3: हाँ, ये अभी रबी खत्म हो चुका है, खरीफ सीजन चालू होने वाला है, उसके अंतर्गत अभी क्या है किसानों को खाद की व्यवस्था के बारे में,
2: अच्छा
3: बीज की व्यवस्था के बारे में, उसी प्रकार जैसा अभी तो किसानों को खाद की कमी महसूस ना हो करके
2: अच्छा
3: हरी खाद का के उपयोग के बारे में उनको जानकारी दी गई है। बीजीय खाद जो होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सन ढेचा
2: अच्छा
3: लगाने की सलाह दी गई है।
2: हाँ हाँ हाँ, आपके जो एरिया कहे जाए कहाँ पड़ते, कहाँ कहाँ पड़ते, कतक एरिया आप देखते हो, कतक क्षेत्र देखते हो अपन?
3: चक्रभाटा क्षेत्र मेरा है मेन।
2: हाँ हाँ हाँ,
3: उसमें बोदरी,
2: हाँ
3: तलसरा, चक्रभाटा और रहंगी खमहाड़ी, 5 गांव आता है मेरे अंदर में।
2: किसान के संख्या का हुई लगभग आप मन के पूरे क्षेत्र में कहे जाए तो?
3: किसान की संख्या वही जो धान बेचते हैं उन किसानों की संख्या करीब रहेंगी में 150 और बोदरी में 265, तेलसरा में 200, चक्रभाटा में 200।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तेलसरा में घला बने कन किसान हमें, 200 किसान तो अपन के धान बेचिए किसान कहे जाए मंडी ले जो जुड़े हमें। जैसे किसान सम्मान निधि के बात करे है अपन बताए है तो तेलसरा में ऐसे कतेक किसान हुई जे मन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के योजना के लाभ ले हुई?
3: तेलसरा में कम से कम 109 लोगों को मतलब इनका पीएम सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है।
2: अच्छा
3: बाकी 65 किसान जो है इस साल क्या है एग्री एस्टेक तो करवाए हैं पंजीयन, किंतु पीएम सम्मान निधि पंजीयन नहीं होने के कारण
2: अच्छा
3: 65 किसानों को

0: फायदा नहीं मिल पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अपन से गोट बात करें, अपन बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में बैठे हमारे रघुराज सिंह गौतम जी मन, जो हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिलहा में पदस्थ हमें। तो सबसे पहले तो राम राम अपना।
2: राम राम।
1: ये जो अभियान चला था कृषि संकल्प अभियान, एक उद्देश्य थोड़ा बताया अपन।
2: हाँ, विकसित कृषि संकल्प अभियान के उद्देश्य किसान मन के गांव में ही किसान मन के सामने जाके जो कृषि के तकनीक है जो आज के समय में सबसे ज्यादा जेकर आवश्यकता है ओकर से मतलब परिचित कराना, जेकर से उमन के उत्पादन बढ़ाए, मिट्टी पानी और उमन के जो फसल है इमा बिना कोई नुकसान हुए ज्यादा उत्पादन आए और उमन की आमदनी बढ़े, ये ओकर उद्देश्य है। विशेष रूप से जो योजना चलत है किसान मन के लिए, वो एक तो सबसे अच्छा सरकार के जो योजना है वो मिट्टी परीक्षण की योजना है।
1: अच्छा।
2: कि आप किसान मन अपन अपन खेत के जो मिट्टी है ओला निकाल के अपन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से परीक्षण के लिए दे सकते हैं। वो परीक्षण करे के बाद में मिट्टी के की सॉइल हेल्थ कार्ड इशू होते मतलब मिलते, उमा ये समझ में आते कि मिट्टी में कौन सा तत्व की कमी है और उमा कौन सा खाद कतेक मात्रा में डालना है कौन सा फसल के लिए। ये एकदम सरल तरीका है, हर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ओमा किसान मन से संपर्क करके मतलब बताते हैं कि कैसे मिट्टी लेना है। सरल तरीका है, साफ सुथरा जगह से खेत से मिट्टी लेना है और ओला आधा किलो की मात्रा में साफ पन्नी में खेत के नाम या खसरा नंबर, किसान के अपन के नाम, जो फसल लेना है वो और गांव के नाम अच्छा लिख के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के साथ जमा कर दी, पास जमा कर दी। अब ओला प्रयोगशाला में भेज के उसका रिपोर्ट जब मिलते वो कार्ड किसान दिए जाते हैं और वहाँ बताया जाता है कि एमा का आपने डालना है।
1: ये तो बताया आप माटी परीक्षण माटी जांच के बारे में, अभी जैसा आप बता था तो कतेक कृषक हुए जो मिट्टी परीक्षण करा चुके हुए हैं आप मन के ये क्षेत्र में?
2: बहुत सारा किसान मन के मिट्टी परीक्षण हो गए है लेकिन एमा हर तीसरे साल में कराना पड़ते फिर से। तो किसान भाई मन के जो 3 साल जो उनके हो गए मिट्टी परीक्षण के तो मन फिर से करा सकते हैं। वैसे तो हर साल ये योजना चलते लेकिन हम लोग हर साल मिट्टी परीक्षण कराए का आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बार कराए के बाद 3 साल इंतजार कर सकते हैं, 3 साल बाद फिर से करा लेना ठीक रहते ताकि वहाँ कोई कमी बेसी हुए हो तो कर आप पूर्ति करे जा सके।
1: अच्छा, ये तो मिट्टी परीक्षण के बाद बताया अपन, और कौन सी योजना की जानकारी आप अभी शामिल करे हो?
2: बहुत हाँ, ये अभियान में एक बहुत अच्छा योजना के हमन प्रचार प्रसार कर रहे कि जो हमन की मिट्टी है तेमा रासायनिक खाद का उपयोग करके नाइट्रोजन की आपूर्ति होते, यूरिया मुख्य रूप से जो खाद किसानों में उपयोग करते हैं ओकर आपूर्ति अगर हमन प्राकृतिक तरीके से कैसे कर सकते हैं ओकर लिए नील हरित काई के उत्पादन के तकनीक बताते हैं जो एकदम सस्ता तकनीक है। नील हरित काई उत्पादन के लिए किसान मन ल 10x5 के 1 फीट के गड्ढा करना है या नहीं भी कर सकते तो केवल ईटा में एक पॉलिथीन बिछा के ओकर बॉर्डर के लिए ईटा लगा दे मैं।
1: अच्छा।
2: ताकि पानी ओमा इकट्ठा रहे और ओमा 30 किलो काली मिट्टी ल कूट के डाल देना रहे और ओमा 500 ग्राम चूना 500 ग्राम सुपर फास्फेट मिला देना है और पानी भर के ओला थोड़ा सा मता के रात भर छोड़ देना। सुबह जब पानी स्थिर हो जाते तो वहाँ नील हरित काई के कल्चर जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से वाला प्राप्त हो जाते किसान मतलब बिना कोई लागत के।
1: अच्छा।
2: मुफ्त में ओला ओमन डाल देते हैं। डाले के बाद में ये ध्यान रखना है कि वह वैसी पड़े रहे और धूप पड़त रहे वहाँ। तो इसके बाद 1 हफ्ता बाद वहाँ नील हरित काई के ऊपर में एक परत जम जाते ओला झारा से निकाल लेना है। उसके बाद 5 दिन बाद फिर से वैसी परत जमी तला निकाल के साफ सुथरा पेपर में या कपड़ा में लग के सुखा के रख लेना है और ये पानी है 15-20 दिन में पूरा सूख जाते। तब जो मिट्टी हमन डाले रहे शुरू में 30 किलो ते मिट्टी है हमन के बीजीए कल्चर यानी नील हरित काई के कल्चर है।
1: अच्छा।
2: वो कल्चर 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़कना है।
1: अच्छा।
2: कब छिड़कना है? जब धान रोपा होने के बाद 1 हफ्ता हो जाते पानी स्थिर रहते 2-3 इंच पानी रहते ते खेत में हम अल्लाह वाला छिड़क देना है। एकड़ से क्या होते कि नील काई के कल्चर खेत में चले जाते तो वह एक नीचे में अपन परत बना लेते और वो हवा के जो नाइट्रोजन है जो नाइट्रोजन हमला यूरिया से मिलते फसल यूरिया से मिलते वो नाइट्रोजन वह सप्लाई करते पौधा ला। तब पौधा के जो नाइट्रोजन की कमी थे पूरा होते और एक सार हरा रंग बने रहते पूरा यूरिया जब मिलते तब फसल बहुत अच्छा होते उत्पादन।

0: अच्छा होता है।
1: अच्छा,
0: ये योजना है।
1: हाँ, और कुछ योजना हो ही तो सारांश में बता दो आप, बस
0: आप
1: योजना हो
0: सारांश
1: तो ना।
0: में मैं बता देता हूँ कि एक तो हमन इस साल बहुत अच्छा योजना रही थी, रबी में चना और सरसों और मसूर के खेत जो खरीदी सरकार समर्थन मूल्य में करी थे। तो जे मन किसान भाई मन गर्मी के धान लगाते हैं, पानी बचाए की स्थिति से वो खराब प्रैक्टिस एक तरह से, तो उमान लाखों लीटर पानी खराब करे के बाद 20-25 हजार रुपये कमाते। ओकर बदला उमन अगर उनारी के फसल लगाई, चना लगाई, सरसों लगाई, तो सरकार समर्थन मूल्य में खरीद लेते।
1: अच्छा।
0: योजना पीएम आशा योजना के अंतर्गत ये चालू हो चुके हैं। इस साल जिला विकास खंड में बिल्हा में समिति बिल्हा और सेंद्रीय समिति में खरीदी करे गए किसान मन के। एकर से मन जुड़ सकते हैं, अपन को भी समिति जीवन समिति से किसान जुड़े हैं तो पंजीयन करा ले, अपन रकबा बता के और अपन उनारी की फसल में बेच सकते हैं। हाँ, मुख्य रूप से भी ये योजना चलत है और बाकी जो
1: अच्छा
0: समिति के माध्यम से मतलब खाद बीज मिलते थे सरकारी दर में मिलत है।
1: ठीक है, आप हमसे जानकारी लें, है ना, आगे गुड़ बात करबो। राम राम
0: हाँ हाँ पाजी,
1: राम राम।
0: राम राम।
2: विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आज हमन किसानवाड़ी गांव में एक क्रम में ग्राम पंचायत तेलसरा विकास खंड बिल्हा पहुंचे हन। हमारे बीच में विकास खंड बिल्हा के कृषि विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह जी मन घला एक कार्यक्रम में हमें। तो सबले पहली तो सिंह जी अपना राम राम।
3: राम राम सर।
2: ये जो अभियान चलत हवे एकर उद्देश्य का है लो बताओ अपन।
3: ये सर विकसित किसान संकल्प अभियान जो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है, समझाइश दिया जा रहा है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, सॉयल हेल्थ कार्ड है, हरी खाद है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल के संबंध में, केसीसी के संबंध में, संतुलित उर्वरक प्रयोग के संबंध में, ये सब के बारे में समझाइश दिया जा रहा है।
2: आप जैसे कृषि विकास अधिकारी हो तो आपके ये विकास खंड बिल्हा में कतेक ग्राम पंचायत कतेक गांव पड़त होही आपके क्षेत्र में?
3: मेरे क्षेत्र में सर 55 गांव है।
2: अच्छा, तो ये प्रकार देखे जाए तो तेलसरा ग्राम पंचायत में आपके हितग्राही कहे जाए, जो शासन योजना के जो शासन चलत हवे एमे हितग्राही किसान के का कुछ आंकड़ा बता पाओ अपन, कौन कौन से योजना के लाभ हमारे किसान भाई मन कतेक कतेक किसान भाई मन लाभ ले हैं?
3: और इसमें सभी प्रकार के हैं सर, पीएम किसान योजना के भी हितग्राही हैं, सम्मान निधि पीएम किसान सम्मान निधि के हैं, और ये सॉयल हेल्थ कार्ड योजना, सभी योजना किसान है मतलब सभी कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं सर।
2: रकबा अगर बात करबो तो तेलसरा ग्राम पंचायत में कृषि के क्षेत्र कतेक हो ही, खास करके धान के रकबा कतेक हुई, ऐसा कुछ अनुमान है का अपना?
3: सर 400 एकड़ के आसपास है। जी
2: अच्छा,
3: जी हाँ,
2: और
3: और
2: कृषक कतेक हुई?
3: लगभग 55-60 ट्यूबवेल है। जी
2: अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था है कहे जाए। कृषक
3: हाँ,
2: हितग्राही कृषक कतेक हुई अंदाजन आपके में आंकड़ा में?
3: किसान संख्या भी 300+ है सर।
2: अभी जैसन कि धान के बदला में दलहन तिलहन के ज्यादा करके प्रयास करे जात हवे शासन के द्वारा, तो ऐसा
3: जी,
2: आपके द्वारा का प्रयास करे गए हवे?
3: हम लोग विभाग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ग्रीष्म धान जो रवि फसल में लगाते हैं उसकी जगह ये आपका गेहूं है, सरसों, चना, उड़द, ये सब फसल लगाने के लिए सर अगले साल से इस प्रयास चल रहा है। अभी इस गांव में कम सफलता मिला है,
2: अच्छा
3: और दूसरे गांव में वही लगा हुआ बुंदेला है, बोरसरा है, ये एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी धान की जगह दूसर फसल सरसों लगा है 150 हेक्टेयर में, बुंदेला में,
2: अच्छा
3: बोरसरा में 40 हेक्टेयर में चना फसल है, ये
2: अच्छा
3: सब उधर ज्यादा परिवार पर इस गांव में कम है।
2: ये कार्यक्रम के बारे में आप कुछ हमारे किसान भाई मल्ला अगर बताना चाहो, संदेश कुछ देना चाहो तो
3: किसान
2: आप।
3: भाइयों की यही संदेश है सर कि रबी फसल में गेहूं का अरे धान का फसल का तो एकदम बंद ही करना है, कि पानी की समस्या लगातार होते जा रहा है, पेयजल का समस्या, सिंचाई का जो बोर है वो भी सूख जा रहा है, फसल नुकसान हो जा रहा है, और लगातार धान की खेती करने से मिट्टी भी खराब हो रहा है हम लोगों का, वो फसल परिवर्तन एकदम जरूरी है।

0: और दलहन तिलहन में समृद्ध भी बनने हैं, छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास भी है और दलहन तिलहन फसल का खरीदी भी इस रविवार से चालू हो गया है सर, समर्थन मूल्य पर।
1: अच्छा अच्छा,
0: किसान लोगों को भरपूर रेट समर्थन मूल्य मिल जाएगा, पहले दिक्कत होता था, अब समर्थन मूल्य गारंटी रहेगा किसानों के लिए।
1: हाँ, हमारे बीच में ग्राम तेलसरा के बहुत अकन किसान भाई मन बैठे हवे, तो इनको मन से गोड़ बात कर लेते हैं। तो भैया राम राम।
2: राम राम।
1: कहना है अपन के जी?
2: मोहित आगरे।
1: हाँ मोहित आगरे जी, देखो आप मन के गांव हम आए भाई है ना, तो आप मन का करता हो, खेती किसानी करता हो, का करता जी?
2: वही खेती किसानी।
1: खेती किसानी करता हो, कई कर खेती है अपन के?
2: वही ढाई एकड़ है, दो ढाई एकड़।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, का लगा था भैया?
2: धान लगा था।
1: कौन कौन से किस्म लगा था?
2: करना महमाया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, एकर अलावा कुछ और लगा था का? तिवरा है, बटकर है?
2: मत नहीं लगा, खैर गाँव में लगते है।
1: अच्छा अच्छा,
2: उतक नहीं लगे, नहीं बरोबर लगते, खाए इधर थोड़ा बहुत।
1: अच्छा, जोंधरी वगैरह?
2: अब भुट्टा उत्ता तो नहीं लगे अभी।
1: अच्छा, तो पानी के का साधन है भैया, सिंचाई के?
2: पानी के हवा पानी का साधन है, आजू बाजू में ट्यूबवेल लगे थी तब तो मिल जाते।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, आपन कौन से पद्धति लिए से खेती करता जी? रोपा। अच्छा रोपा, ओला जैविक कर था कि खातु माटी डाल था जी? रासायनिक?
2: रासायनिक के डाल था, खातु माटी कहाँ मिलत है?
1: अच्छा
2: गाँव में।
1: मवेशी जानवर वगैरह पाले है का?
2: नहीं पाले।
1: अच्छा, और कुछ बकरी छेरिया कुकरी?
2: कुछ नहीं है का?
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अपन सब गोड़ बाट करें, आप मल्ला धन्यवाद। हमारे बीच में ग्राम पंचायत तेलसरा विकास खंड बिलहा के प्रगतिशील कृषक हमें अब कैसे खेती किसानी करते हैं उनकर जुबानी सुन ले जाए। भैया राम राम।
3: भैया राम राम। राम राम।
1: का नाम है अपन के जी?
3: प्रदीप कुमार सूर्यवंशी।
1: हाँ प्रदीप, आप मन खेती किसानी करते हो तो कई एकड़ खेती हुई जी आप मन के?
3: मोर हवा 3 एकड़। ना मैं 7 एकड़ बोआ था।
1: 7 एकड़ खेती है ना, तो 7 एकड़ खेती में का लगा था आप?
3: मैं धान लगाता हूँ, गेहूँ भी लगाता हूँ और रबी फसल भी लगाता हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो कई एकड़ धान हुई आपन के?
3: अभी गेहूँ धान तो लगा रहे हैं, मतलब 2 एकड़ में धान लगा रहे हैं।
1: अच्छा,
3: और 5 एकड़ में गेहूँ लगा रहे हैं।
1: अच्छा, मतलब गेहूँ बढ़िया लगा था आपमन?
3: हाँ गेहूँ बढ़िया लगा था।
1: अच्छा, तो
3: लहरा वाला गेहूँ लगा था मैं, लहरा वाला।
1: अच्छा, तो ये तो बतावा ये धान में कौन कौन किस्म ले था जी?
3: मैं धान में सरना है।
1: अच्छा,
3: और अभी नया उत्पादन ना है जमुना पान और सोना मासरी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो उत्पादन कतेक हो जाते है भैया?
3: और उत्पादन हो जाते है अब लगभग 55 कट्टी के आसपास एकड़ में हो जाते।
1: अच्छा, और गेहूँ ला जैसे बोथा तो कैसे बोथा का करता?
3: मैं गेहूँ का अभी मैं 1 एकड़ में इधर लहरा बो रहे हैं, जैसे धान बो था नहीं लहरा, तो उसने बो रहे हैं, तो अभी गेहूँ हर मुराई से 35 कट्टी एकड़ माई से।
1: अच्छा,
3: लहरा हर एक ठन हर बाकी है तो कम कम आई से।
1: हाँ।
3: वो लेकिन मगर नया पद्धति बताई से एक जन कोई भी। हाँ। बाहर के आदमी जिन कही बो के देख तो गेहूँ हम बोथा नहीं चाहिए। 35 कट्टी आई से गेहूँ हर लहरा में।
1: अच्छा, तो एक है मतलब आप थोड़ा नवा तकनीक अपनाए है कहे जाए लहरा कह के?
3: एक एक एक ही कर्म अपना रहे हैं,
1: मतलब फर्क पड़ी से कई कर कतिक में फर्क पड़ गये उत्पादन में?
3: उत्पादन ओमा पाए हैं मान लीजिए ना, ऐसे बोल रहे हैं तो वहाँ पाए हैं 15-15 कट्टी अगर पा रहे हैं, वहाँ 35 कट्टी पाए हैं कि कर्म
1: बतावा बहुत बढ़ गया था तो
3: लहरा बोल रहे हो?
1: अच्छा,
3: ओमा ना लगभग 14 से 15 दिन के अंदर रोज पानी देना है।
1: अच्छा,
3: और जैसे हम धान खेती करते ना लहरा वाला, उसने खेती करे पड़ते गेहूँ को बताई तो उसने खेती करे मैं 1 एकड़ में, जैसे DAP डालता रोपा के समय उसने DAP डाले हो, राखर पोटाश भी डाले रहे हो, कीटनाशक भी डाल रहे हो, मतलब खेती है ना धान का सुबह लगा रहे हूँ।
1: अच्छा,
3: हाँ
1: तब जब पानी की जरूरत 15-15 दिन में पड़ी से, सिंचाई की व्यवस्था तो है तभी तो कर।

0: पिछला
1: नहीं, बोर हवाए मोर खुद के
0: कतेक हवा जी, कैसे बोर है?
1: बोर हवाए मतलब मैं खेत बोस ना,
0: हाँ,
1: बीच में बोर हवाए।
0: अच्छा,
1: उधर खेत पड़ा थे उधर पास, मतलब पूरा पाइप द्वारा यो पाइप आते रोल वाला।
0: हाँ,
1: तो बिसा के एक बंडल लगभग 6,000 पड़ते है।
0: हाँ,
1: मतलब खेत द्वारा मतलब पूरा पाइप बंडल बिछा रहे, अपन पंचायत सप्लाई होते नहीं।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: इसमें पूरा पाइप में अपन पूरा खेत में फैला बैठे।
0: अच्छा,
1: और बोरिंग के तीर में सब मोर खेत हवा,
0: मतलब पानी के तंगी नहीं है कहे जाए?
1: नहीं, पानी के कमी नहीं है मोर में।
0: हाँ, तो उत्पादन तो बता दे आप मन, एक अलावा क्या लगा था?
1: मैं 7 एकड़ मत खेती करता हूँ।
0: अच्छा,
1: और खातू के हिसाब से थोड़ा ना आदमी मन कही देते, डीएपी डीएपी भी देते, तो डीएपी में चिचक भी रहा। मैं ना राखड़, यूरिया और पोटास।
0: अच्छा,
1: मैं आज 3 साल हो गए मैं यही छिंचता हूँ, डीएपी नहीं छिंचत रहा।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो एक से कहा तुम लोग फर्क आई से जी बताओ।
1: मैं एक तरह के ना सब केमिकल तो डीएपी भी मिले हैं।
0: हाँ,
1: और सब केमिकल को मैं अलग अलग सींचा था। तो फायदा ये है कि मैं अलग अलग केमिकल लेके सींचा था, मुझे फायदा ज्यादा है।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो
1: मैंने डीएपी में 3 सालों में बंद कर दिए। और कई जन बताते थे कई जगह बंद करे हूँ।
0: अच्छा,
1: और जब शुरू आई ना तो डीएपी सींचा रहे, और पेड़ा काम करते डीएपी के सब रही, और डीएपी भी सींचा था तो पेड़ा की दवाई सींचा था। तो मैं कह नहीं ये सब बेकार है, आखिर पेड़ाक दवाई सींचा था तो डीएपी का है किसकी दवाई, राखड़ यूरिया पोटास मिला के सींच देता।
0: बढ़िया,
1: तो मैं वही मिला सींचता हूँ और पेड़ा की दवाई तो सींचबे करता।
0: अच्छा ठीक,
1: तो वो भी सींचता हूँ।
0: गाय गरुआ पाले है? हवा है?
1: हाँ, गाय गरुआ हवा है।
0: कते कन हो ही?
1: मोर 4 ठन गाय है और अभी 3 ठन बछड़ा हो है।
0: खातू माटी गोबर खाद वगैरह डालता
1: हूँ, घर के गोबर खाद हो जाते।
0: अच्छा,
1: अब साल में एक दो एकड़ हो जाते।
0: अच्छा,
1: अब गोबर खाद तो मैं हर साल खेत में डालते करता हूँ, और बिछा देते कोई साल बिछाता हूँ चलने बिछता हूँ
0: ऐसे।
1: डेयरी वाला है ना, पैरक ले जाते रहते।
0: अच्छा,
1: तो कोई साल दे देते, एक ट्रेक्टर कोई साल नहीं दे।
0: तो ऐसे करके व्यवस्थापन करे है?
1: हाँ, व्यवस्था उसने करे हूँ।
0: अच्छा, ये तो बतावा आपला कोनो प्रकार के शासन के कुछ योजना के लाभ मिले है का?
1: शासन के योजना के लाभ नहीं मिले है।
0: अच्छा, नहीं मिले है आपला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मिलते?
1: नहीं मिले,
0: नहीं मिले,
1: नहीं मिले।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आपन सो गोट बात करें। हाँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई।
1: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक कार्यक्रम मां संपादन और रिकॉर्डिंग रही सवय गोपाल कृष्ण पांडे के, और संयोजन और प्रस्तुति रही सवय डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। इस संग एक कार्यक्रम ले विदा दो। राम राम, जय जोहार।
3: संगी हवा, अभी आप मन सुनत रहे किसानवाणी गांव में, स्थल रिकॉर्डिंग आधारित रही से कार्यक्रम है। ग्राम तेलसरा विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर, संयोजन रही और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीन के, और संपादन और रिकॉर्डिंग हमर सहयोगी मंगू भाई के। तो चला ये कार्यक्रम ला सुने हन, अब सुनत हन ये संदेश आला। चला दो किसान कॉल सेंटर, चला दो ना।
4: अरे सुन तो।
5: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
4: किसको?
5: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
4: अच्छा, ये बात है?
5: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
4: अब तो झट से बात हो जाती है।
5: ऐसा क्या?
4: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
5: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
4: हाँ,
5: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।

0: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहा
1: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर अब तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है, इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
3: संगी हो अभी सुनील संदेशा और आज के तापमान बता देता हूँ। 41.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है 29.4। अब मंडी के बात करबो तो तखतपुर मंडी में धान महमाया 2200 रुपया है, धान सरना 2200 रुपया और कोटा में धान महमाया 2300 रुपया है और जयरामनगर में धान महमाया 2250 रुपया है। यही गोड बात के संग हमर बेरा हो गए घर जाए के, तो गौरी बहनी ला देवा विदा। राम राम, जय जोहार।

अभी किसानवाणी का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं अभिजीत सावंत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के गायक कलाकार हैं अभिजीत सावंत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज गायक कलाकार थे अभिजीत सावंत। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

सूरज ढल चुका है और आसमान ने सितारों की चादर ओढ़ ली है। रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, रात तो होती है खुद से मिलने के लिए, यादों के झरोखे खोलने के लिए और बस उसमें खो जाने के लिए। श्रोताओं, आज की रात हम रजनीगंधा में सजाएंगे उन गीतों को जो सिर्फ और सिर्फ बने हैं रात के लिए। तो चलिए सफर का आगाज करते हैं और शामिल करते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा में इस गाने को।

रात का अपना एक अलग अंदाज ही होता है। जो बातें हम दिन में चाहकर भी नहीं सोच पाते, रात के सन्नाटे में वो खुद ब खुद हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। किसी की यादें, कोई भूला हुआ वादा या फिर आने वाले कल के हंसी सपने।

रात का एक पहलू भी है। जब दिन का शोर थमता है तो हमें अपने अंदर एक आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी रातें बीते हुए कल की ओर भी लेकर जाती हैं और आँखों ही आँखों में सारी रात बीत जाती है।

रात खामोशी या उदासी का नाम नहीं है। जब रोशनी में महफिलों के चराग सजते हैं तो पैर थिरकने से हम खुद को रोक नहीं पाते।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: श्रोताओं, ये वक्त भी बड़ा अजीब होता है। कब पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता है। अब देखिए, कार्यक्रम रजनीगंधा से विदा लेने का समय आ चुका है, तो जाते जाते ये शुभकामनाएं कि कल की सुबह हम सभी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी। और चलते चलते आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम रजनी गंधा यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। आप सभी को शुभ रात्रि।

कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 होने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने यह बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र

0: राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
2: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे, खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में

0: रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations, comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland, have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे इशारा फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

जंगली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था। वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है

जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

छाया गीत, छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। ख्वाबों को मुट्ठी में बटोरे वो बेख्याली में जिंदगी की राहों पर सरपट भागती जा रही थी कि अचानक राह पर पड़े पत्थर से टकरा गई। मुट्ठी में बंद ख्वाबों के जुगनू इधर उधर बिखर गए। उसका एक भला सा नाम था, लेकिन उसकी पहचान नाम से नहीं बल्कि उसके हुनर से थी।

उसके ख्वाबों के मोती राह पर गिरकर टूट टूट कर बिखर गए तो उसका दिल भी टूट गया। उसे दिल के टूटने की आहट हो गई। उसने टूटे हुए दिल से दूसरे ख्वाब बुनने शुरू कर दिए। बहुत जल्द उसके ख्वाबों की एक नई दुशाला बनकर तैयार हो गई। बस वो ख्वाबों की रेशमी दुशाला पहन रात के सन्नाटे में चांद से बतियाती अपना सफर पूरा करने लगी।

ख्वाबों की रेशमी दुशाला ओढ़े वो खेतों मेड़ों से जा रही थी, तभी उसे कहीं से रेडियो की आवाज आई। रेडियो पर बज रहा था मोहब्बत का गीत, प्यार का राग। बस उसे उस गीत से प्यार हो गया और उसके कदम ठिठक गए। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत होता है प्यार का राग।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। रेडियो की आवाज की डोर पकड़े वो खेतों से बाग की ओर चल पड़ी, जहां आम और जामुन के पेड़ों के बीच इत्र की खुशबू बिखरी थी। इत्र की खुशबू में अजब सा सम्मोहन था। उस खुशबू की ओर वो बढ़ती चली गई। फिर सुबह की उगी नरम धूप सी किसी का मुस्कुराता चेहरा था। वो कोई शख्स था या था सपनों का शहजादा? बस वो उस तिलिस्मी शख्स को भर आंखों देखती रही।
1: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
2: जरा मैं भी सुनो।
1: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
2: तुमसे? नहीं,
1: मैं

0: कहो।
1: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
0: नहीं, खुद पे नहीं।

उड़ती फुदकती तितली भौरों के पीछे भागती, कोयल सरीखी मीठी आवाज में कुछ गाती गुनगुनाती, ख्वाबों का सुंदर पिटारा लिए चली जा रही थी। नरम नरम धूप के मैदान से लगी हुई फुलवारी पर उसकी आंखें ठिठक गईं। सुर्ख रंग की पोशाक में वही वो शख्स मुस्कुरा रहा था, शायद ये वही शहजादा था, ख्वाबों वाला शहजादा।

उस शहजादे ने पलकों की पंखड़ी पर फूलों का झुरमुट धर दिया। फिर एक दिन उसने मुट्ठी में एक बीज थमा दिया। उस बीज से प्रेम का अंकुर फूट गया। सुबह के उजास में प्रेम का पौधा जगमग होने लगा। तब से अब तक वो

0: दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर